समय साड़ी दुनिया के तमाम पंजाबियों नूं अपने वालों सत श्री अकाल कह रहा हाँ, कबूल करो इस खुशी के मौके से जिथे एडे जश्न मनाए जा रहे ने अज इंडी सगू वास्ते उसकी एक खूबसूरत पेशकश दे विच जो मेरा सब तो फेवरेट गीत है बाबियां दे चल चलिए।

gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: मुकद्दस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
1: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शरायत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
2: Who doesn't want to save money on their energy bills and improve their home at the same time? Home Energy West Yorkshire can help you do just that. They offer free, impartial and easy to understand advice, no matter the size of your home or budget. Find out more at their Bradford Interchange pop-up shop every Wednesday and Thursday between 10 and 4. You could even win a prize, including shopping vouchers and family days out. Search Home Energy West Yorkshire.
3: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

Welcome back after this beautiful song. Welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM. आप सुन रहे हैं right now. मेरा नाम है अभी और आज सुबह मैं आपके साथ रहूंगा. Welcome to this beautiful start of the weekend. काफी सारे beautiful songs मैं सिर्फ आपके लिए play करने वाला हूँ, आपके लिए dedicate करने वाला हूँ. So stay tuned with me.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाएं रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें

वेलकम बैक आफ्टर येट अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑन योर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है एबी एंड ऑफ कोर्स 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा। मतलब सनराइज रेडियो आप काफी सारे मीडियम के थ्रू भी सुन सकते हैं, आई होप आपको पता है। वेल डैब के जरिए आप सुन सकते हैं इन मैनचेस्टर, एट द सेम टाइम दुनिया के किसी भी कोने में आपने सिर्फ हमारा ऐप डाउनलोड करना है एंड देन देयर यू गो, इंटरनेट के जरिए आप कहीं भी सुन सकते हैं। ऑल्सो हमारी वेबसाइट है ना, सो www.sunrisevideo.fm पे लॉगिन कीजिएगा, सारे अपडेट्स अपकमिंग इवेंट्स सब कुछ आप वहाँ पे देख सकते हैं। एट द सेम टाइम रेडियो का लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। सो कीप दैट इन माइंड एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू।

वेलकम बैक आफ्टर द क्लासिक फ्लैशबैक। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि इन गानों को ना कोई भी नहीं बीट कर सकता, इसीलिए कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यार, काफी एंजॉय किया मैंने और आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। Well, right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news और the beam, beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा। So stay tuned with me. I'll see you on the other side.

वेलकम टू येट अनदर ब्यूटीफुल हिट ऑफ द आवर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ। इस गाने को अपने पसंद किया होगा ऐसी मैं आशा कर देता हूँ। मेरा नाम है एबी एंड ऑफकोर्स 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और इस आवर में भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मनोरंजन किया जाएगा, अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँ। तो स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम।

Once again, welcome back after yet another beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. आशा करता हूँ कि इस वीकेंड की शुरुआत आप काफ़ी enjoy कर रहे हैं. मतलब relax भी करना चाहिए, rest भी करना चाहिए, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम weekdays में नहीं कर सकते, काम के time पे नहीं कर सकते. So I think एक list अगर हम बनाते हैं ना, छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे काम हो सकते हैं, अगर उन कामों को एक स्मॉल स्पेन ऑफ टाइम में अगर हम फिनिश करते हैं ना, तो पूरे हफ्ते के लिए आई थिंक हमें वरी करने की जरूरत नहीं. जस्ट अ थॉट. एंड ऑफ कोर्स द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

Welcome back after the classic flashback only on Sunrise Radio 103.2 FM. Nothing like the golden oldies. But right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news और तभी इन beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. कहीं ना आप जाएगा. I'll see you on the other side of this hour. Stay tuned.

इस आवर के तीसरे घंटे में आपका स्वागत है एंड वेलकम बैक आफ्टर द हिट ऑफ द आवर. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. ऑफ कोर्स मेरा नाम है अभी और आज 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. दिस इज द सेकंड लास्ट आवर ऑफ माय शो. एंजॉय कीजिएगा इस वीकेंड की शुरुआत को, इस सुबह की शुरुआत को और सनराइज रेडियो पर प्ले हो रहे हैं इन गानों को. द नेक्स्ट सॉन्ग स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

Welcome back after this beautiful song, only on Sunrise Radio 103.2 FM. काफी मधुर गाना था यार, I just loved it. Only on Sunrise Radio 103.2 FM पर आप सुन रहे हैं इन हसीन गानों को. मेरा नाम है Abby and of course 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. अगला गाना सिर्फ आपके लिए है, dedicated.

0: देखा था, इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London, with even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.
3: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

शो के आखिरी घंटे में आपका स्वागत है। सनराइज रेडियो 103.2 एफएम, ऑफ कोर्स आप सुन रहे हैं राइट नाउ। हिट ऑफ द आवर के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर। मेरा नाम है अभी, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा, विच मीन्स दिस इज द लास्ट आवर ऑफ दिस शो। कहीं ना जाइएगा, काफी सारा ब्यूटीफुल म्यूजिक आएगा इस आवर में भी। द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू।

Welcome back after this beautiful song. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. This beautiful song है, मुझे भी बहुत पसंद आ गया. मतलब ऐसे गाने होते हैं कि सबको कभी कभी पसंद नहीं आते हैं, पर you know, you just started falling for this song. So this was one for me. और इसी नोट पर अगला गाना सिर्फ आपके लिए डेडिकेट किया.

वेलकम बैक टू द क्लासिक फ्लैशबैक ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है अभी और आज इस सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ था। काफी मजा आ गया मुझे और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी काफी मजा आ गया इन गानों को सुनकर। वेल राइट नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो क्योंकि द नेक्स्ट प्रेजेंटर विल बी विद यू। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, योर लव्ड वंस और मेरी और आपकी मुलाकात होगी हमारे अगले शो पर। टिल देन अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखिएगा, उनका हाल चाल पूछिएगा। गुड बाय।

पे सिटी बजाऊं जब मैं हौले हौले, उसके दर पे सिटी बजाऊं जब मैं हौले हौले।

0: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day. This is Sunrise Radio Yorkshire.
1: From the Sky News Centre at 11, Reform UK's deputy leader Richard Tice says the crypto businessman who's giving the party £36 million is moving back to Britain from Hong Kong. MPs backed a foreign donation cap last week, though it's not yet in law. Donald Trump has kicked off a two-day visit to Ireland and repeated claims that prices will tumble if the UK allows new North Sea oil and gas drilling. He's met Prime Minister Micheál Martin. Later, he'll attend the Irish Open Golf at his Doonbeg Resort.
2: It's rated one of the greatest courses in the world, and I'm very honored to have it. I built it. So it's very exciting, and we do it in business. We've had some discussions on trade and various other things. We have a big relationship with Ireland.
1: The Ministry of Defence has denied reports a military aircraft's flight plan was behind this week's air traffic control glitch. Around 2,000 UK flights were affected. Half a 17th floor flat has been damaged in a fire in a 22-storey block in Poplar in East London. It was brought under control this morning. There's a warning about the risk of websites selling peptides after one product was found to contain 90% unknown chemicals. The drugs promised to help with skincare, muscle repair and even ageing. The unregulated market is worrying scientists, though, like Professor Perdita Baran.
3: There's a lot of impurities in it, and I would say it's only 10% pure. Those other chemicals that we don't know what they are could give them a small reaction or might not do anything, but somewhere down the line they might hang around in their body, they might affect them, and we just don't know that.
1: The government is urging people only to buy from trusted sellers. And some sensational batting from Pakistan's number nine has helped push the third test with England into an unexpected fourth day, which begins shortly. Razaullah's 81 off 63 balls means the hosts need 131 to win at Edgbaston. That's the latest. I'm Matt Steele.
4: हजारों दुआओं, मोहब्बतों, चाहतों और खुशियों के लाजवाल खजानों की ख्वाहिश के साथ नाहिद चट्ठा आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। तमाम सुनने वालों को गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और वेदर जो है वो बदलते हुए मौसम को इंजॉय कर रहे होंगे। क्या करें जनाब, इंग्लैंड में हमें बदलता मौसम भी हर वक्त देखना पड़ता है और बदलते लोग भी हर वक्त देखना पड़ते हैं। जी हाँ, सिर्फ इंग्लैंड में क्या, पूरी दुनिया में भी। तो अपने आप को हमें रेडी रखना चाहिए किसी भी मौके के लिए। जी हाँ, बदलते मौसम के लिए और बदलते लोगों के लिए। तो जनाब, आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो 100.6 FM एंड 103.2 FM पर अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर। डैब पर आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, कीथली में, इल्कली में, स्किप्टन में, लीड्स में, हैलिफैक्स में और मैनचेस्टर में। जनाब, आप ईस्ट लंकाशायर में सुन रहे हैं सनराइज रेडियो की नशरियात को ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन और मिल्टन कीन्स में। और जनाब, अब आप वेस्ट लंदन में भी हमारी नशरियात बराह रास्त सुन सकते हैं और उम्मीद है बहुत से लिसनर्स सुन भी रहे होंगे। अगर आप इन तमाम चैनल से हमें नहीं सुन पाते तो कोई डर नहीं जी, कोई फिक्र दम मुकाम नहीं, कोई फिक्र वाली गली नहीं। तुसी एप्पल ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर तो, जी हाँ, एप्पल ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी वेबसाइट www.sunrise.radio। ते खुले दिल नाल सुनो, वाईफाई तेरे कोल है या फिर अनलिमिटेड डाटा तेरे कोल है, इंजॉय करो सनराइज रेडियो दी नशरियात। और एक दो और आपके लिए अनाउंसमेंट बड़ी मज़े की। जी हाँ, सनराइज रेडियो के जो लिसनर्स हैं, सनराइज रेडियो लिसनर चॉइस अवार्ड्स 2026 जल्द ही आ रहा है, यानी कि सनराइज रेडियो लिसनर चॉइस अवार्ड्स 2026 आर कमिंग सून, सेलिब्रेटिंग द बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, वेन्यूज एंड आर्टिस्ट यू लव। वोटिंग विल बी एक्सक्लूसिव टू लिसनर क्लब मेंबर्स, यानी कि ये जो अवार्ड आ रहा है सनराइज रेडियो लिसनर चॉइस अवार्ड। आप लिसनर्स जो हैं सारे वो अपनी चॉइस के बेस्ट लोगों के लिए वोट करेंगे। आपको जो बिजनेसेस बेस्ट लगे, ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ट लगे, वेन्यूज बेस्ट लगे और आर्टिस्ट जो बेस्ट लगे। और वोटिंग सिर्फ उनके लिए है जो हमारे लिसनर क्लब के मेंबर होंगे। लिसनर क्लब का मेंबर बनने के लिए आप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं सनराइज डॉट रेडियो पर। आप फ्री में उसके मेंबर बनिए, ज्वाइन कीजिए और सुनते रहिए। और डिटेल्स के लिए आपको उसमें और डिटेल्स भी दी जाएंगी। इसके अलावा सामिन, एक और मज़े की अनाउंसमेंट है कि आपको थोड़ा और फन चाहिए, ज़रा हल्ला गुल्ला चाहिए, ज़रा हलचल चाहिए, तो जनाब विजिट कीजिए सनराइज प्ले और उसमें ऐसा है कि हेल्प राज रेस बैक टू द स्टूडियो इन सनराइज स्टूडियो रोश। फिर उसमें ये होगा कि टेस्ट योर फिल्म नॉलेज विद बॉलीवुड क्विज, यानी कि एक बॉलीवुड क्विज होगा, उसमें आप अपना फिल्म नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं। तानो किन्ना पता है जी गाने दे बारे, फिल्मा दे बारे। या फिर आप डिस्कवर कर सकते हैं विच बॉलीवुड करेक्टर यू आर, यानी कि आपकी शख्सियत किस बॉलीवुड करेक्टर के साथ मिलती जुलती है। तो ये आप प्ले कर सकते हैं, अभी प्ले कर सकते हैं सनराइज डॉट रेडियो पर। लेकिन सामिन, उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जी हाँ, फ्री में सनराइज लिसनर्स क्लब। आप इसको ज्वाइन कीजिए, अनलॉक कीजिए और फिर आपको इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स भी मिल जाएंगे। जनाब ये तो था इंट्रोडक्शन, और प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन पे अब हम जाते हैं। प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन कुछ यूँ है कि जिस तरह से हमारे प्रोग्राम में आपको पता है कि पहले दो आवर्स गीतों के होते हैं, आपकी टेलीफोन कॉल्स होती हैं, कुछ शायरी होती है, कुछ ये कुछ वो, कुछ बातें, कुछ हंसी, कुछ मजाक, कुछ सीरियस, कुछ सैड। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ सैड कम ही हो, इन्नी ज़िंदगी सैड चीज़ा नाल परी पई है, हुन भी सैड लभनिया ने तो फिर फायदा की है ना। हमें सैड चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही हमारे आगे आ जाती हैं। हमें खुशी की चीज़ें ढूंढनी हैं, जी हाँ, खुशी की चीज़ें ढूंढते हैं हम। तो आपके साथ हम होते हैं, सनराइज रेडियो होता है 24/7 फर्स्ट टू आवर्स में, और लास्ट आवर हमारा होता है डिस्कशन आवर, जिसमें हम कभी कभी अपने बहुत ही मोहतबर मेहमानों को दावत देते हैं। और आज जनाब हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया में वो डॉक्टर हैं नारकोटिक्स की और एडिक्शन की, एक और प्राउड पाकिस्तानी, आई एम प्राउड ऑफ आर, मेरी बहुत बहुत बहुत पुरानी फ्रेंड हैं, बस समझ लें बचपन की फ्रेंड नहीं, बचपन से थोड़ा ज़रा बड़े हो गए थे जब फ्रेंड बन गए थे। एंड बहुत बड़ी राइटर हैं, वहाँ के हॉस्पिटल की सबसे बड़ी डॉक्टर हैं, और आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। वो आज हमारे साथ जुड़ेंगी और वो एडिक्शन के बारे में बात करेंगी। जब मेरी उनसे बात हुई एडिक्शन के सिलसिले में कि हमने इस तरह से डिस्कशन करना है, सबसे बड़ी बात तो वो एग्री हो गई अपना टाइम देने के लिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल से आएंगी, फिर खाना वाना खा के फिर शाम को उनकी रात होगी, रात के 10 बजे होंगे और जब वो हमें ज्वाइन करेंगी। और उन्होंने अपना टाइम दिया, मैं उनका शुक्रिया बार बार अदा करती रहूँगी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि नाहिद एडिक्शंस बेशुमार किस्मों की हैं और हमें उन सब को एक्सप्लोर करना चाहिए, तो उसके लिए हमें बहुत से प्रोग्राम्स चाहिए। तो मैंने कहा तुसे राज़ी हो जाओ, हमारे लिसनर्स को मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दूँ और फिर हम इंशाल्लाह इसके बारे में नॉलेज लेंगे, बातें करते रहेंगे लाइट मैनर में, हम गाने भी सुनते रहेंगे, गीत भी सुनते रहेंगे और इसके साथ साथ हमारे पास एडिक्शन का नॉलेज होगा। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि ये टैटूस बनवाना भी एक एडिक्शन है। आपने देखा होगा कई लोगों ने पूरी बॉडी भरी होती है, मुँह भरा होता है, एक आध भी नहीं, लेकिन वो उनको एडिक्शन हो जाती है। कई लोगों ने पियर्सिंग्स की होती हैं, उसकी भी एडिक्शन हो जाती है, मोबाइल की एडिक्शन, और वैसे ड्रग्स की एडिक्शन तो बहुत आम है जो हम सब जानते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी एडिक्शंस हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं और क्या पता हम भी अनजाने में वो कर रहे हों। तो ज़्यादा से ज़्यादा बात मैं डॉक्टर निघत नसीम से करूँगी और डॉक्टर निघत नसीम हमारे साथ जुड़ेंगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर हमें बताइएगा, उनसे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। हम उनके साथ चंद प्रोग्राम करेंगे एडिक्शंस के बारे में कि कैसे पहचाना जाए, कैसे बचा जाए, अगर हो गया तो क्या किया जाए, कोई और कर रहा है तो क्या किया जाए, ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत ज़्यादा चीज़ें जी हाँ इसके बारे में डिस्कशन होगी। और आज का प्रोग्राम बहुत बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि इतनी बड़ी डॉक्टर हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से जुड़ने वाली हैं। उम्मीद है कि मेरे लिसनर्स जो हैं वो इस बात से फ़ायदा उठाएंगे और हमें ज़रूर इस बारे में आगाह करेंगे कि उनको ये प्रोग्राम कैसा लगता है। अच्छा जनाब, बगैर किसी तखीर के बढ़ते हैं हिट ऑफ द आवर की जानिब। हिट ऑफ द आवर सुनते हैं और मिलते हैं इसके बाद। सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो।
5: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6, and even 8-bedroom homes. Call 0127 428 8252.
6: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, बहुत ही खूबसूरत हसीन आपने गीत सुना, खास तौर पर इसकी जो ट्यून है टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग, क्या खूबसूरत ट्यून है। लेकिन इस बात से मुझे, इस गीत के बाद आप फिर कहेंगे फिर मैं वही अपनी हरकतों पे आ गई। जी हाँ, मुझे इस गीत में एक क्वेश्चन आता है, पहली बार आंखों में प्यार देखा तो इतनी देर पहले प्यार के बगैर ही टाइम शैम वेस्ट हो रहा सी, ओ की सी ओ तक भी तो कोई ना होएगा ना। पता नहीं मुझे गाने सुन के, गीत सुन के क्वेश्चंस क्यों माइंड में आ जाते हैं। जनाब टाइम हुआ जाता है टाइम चेक करने का, उसके बाद बढ़ेंगे अपनी कमर्शियल ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी सामीन, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां हमें बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 11:17, 17 minutes past 11। बढ़ते हैं अपने कमर्शियल ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो।
2: सनराइज रेडियो। कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं, टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
4: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाएं रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-0-43 पर कॉल करें।
0: वेलकम बैक सामीन जी, कमर्शियल ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। अगले गीत पर जाने से पहले वाजिद, आप कई हडिसफील्ड से कॉल मसूल हुई, बहुत बहुत शुक्रिया टेलीफोन कॉल करन था। ते तुसी पसंद कर दे हो जब मैं पंजाबी बोलनी हाँ, चलो जी तुहाडे नाल पंजाबी च गल करने हाँ। जी वाजिद साहब दी कॉल मसूल हुई, बहुत चंगा लग्या तुहाडे नाल गल करके, ते तुहानू पंजाबी शायरी भी चाहीदी है। वाजी वाज, कोई गल नहीं, असीं तुहानू पंजाबी की तुहानू सराय की शायरी सुना देने हाँ, उस तो एक स्टेप अगे। जी हाँ, वंज कासिद मेरे यार नू आखी, वंज कासिद मेरे यार को आखी, तेरा सांवल सख्त बीमारे। वंज कासिद मेरे यार को आखी, तेरा सांवल सख्त बीमारे, एडी ओखी यार शिफा कोई नहीं, एडी ओखी यार शिफा कोई नहीं, तेडे हिक दीदार दी मारे। क्या खूबसूरत खूबसूरत। वंज कासिद मेंढे यार को आखी, तेंडा सांवल सख्त बीमार है, एडी ओखी यार शिफा कोई नहीं, तेंडे हिक दीदार दी मारे। क्या बात है जी, क्या बात है। दीदार के हवाले से ही बढ़ते हैं अगले गीत की जानेब, देख के तुझको। एंजॉय कीजिएगा।

जी हाँ, वेलकम बैक सामेन। आपने गीत सुना देख के तुझको। हाँ जी, देख के तुझको। तो क्या कहें कि तुझ में क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। तुझ में क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे। मौसम, खुशबू, बाद सबा, चांद, शफक और तारों में कौन तुम्हारे जैसा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो। हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो। उसने लिख कर भेजा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है, लेकिन सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है, लेकिन कौन हमारा अपना है, वक्त मिला तो सोचेंगे। वाकई ये बहुत बड़ी बात है। इतने बहुत शनासाओं में, इतने बहुत सलाम करने वालों में, मिलने वालों में कौन हमारा अपना है, वक्त मिला तो सोचेंगे। जनाब, वक्त ही तो नहीं मिलता। ऐसा करते हैं कि हम जल्दी जल्दी बढ़ते हैं नूर जहां के पंजाबी के गीत की जानिब। वाजिद भाई, आपके नाम और तमाम सुनने वाले भी सुन सकते हैं। इंजॉय कीजिएगा नूर जहां की आवाज़ में मैं छम छम नच्चा।

जी हाँ सामीन, हमारा गीत पहुंचा इख्तिताम को। मैं छम छम नचा, हमारी बात हुई जनाब हमारे कॉलर अहमद भाई से। अहमद भाई बहुत बहुत शुक्रिया टेलीफोन कॉल करने का और बहुत खूबसूरत शेर सुनाने का। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह जो गीत होगा हमारा इसकी एडवर्ट के बाद, तो डेफिनेटली वो मैं आपके नाम करूंगी। नाहिद जी आपसे भी बात हुई, बहुत अच्छा लगा। तो बातों का सिलसिला जारी रहेगा, हम आपसे भी बात करते रहेंगे। अभी नाहिद लाइन पे ही हैं और अब मैं बढ़ूंगी कमर्शियल ब्रेक की जानिब। कमर्शियल ब्रेक के बाद हमारा एक और गीत होगा, कुमार सानू की आवाज़ में है, दीवाना लेकर आया है जी। उम्मीद है अहमद भाई आप पसंद करेंगे, आपके नाम करते हैं वो गीत और तमाम सुनने वालों के। हमारे साथ रहिएगा, संग संग रहिएगा। बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब।

दीवाना लेकर आया है, लेके आया है दिल का तराना। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने कुमार सानू की आवाज में सुना, उम्मीद है तमाम लिसनर्स ने पसंद किया होगा। जरा धीमा गीत था, बड़े सैडली कह रहे थे दीवाना लेके आया है दिल का तराना, जैसे बड़ी मजबूरी से लेकर आया है। वैसे होता है ना कहीं पे तोहफे बहुत मजबूरी से देने पड़ते हैं। तो गीत बहुत खूबसूरत था, उम्मीद है आपने इंजॉय किया होगा। तो जनाब नाहिद जी, आपके लिए एक और गीत आप पेश करते हैं। आप ये नाहिद मैं नहीं हूँ जनाब, ये नाहिद हमारी बहुत ही प्यारी सी लिसनर हैं। तो नाहिद जी, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा बात करके, और आपने कहा कोई और नूरजहां का गीत वो तो आपके लिए लगा ही देंगे, लेकिन जो अभी गीत आपके लिए हमने लाइन अप किया है ना, आहा क्या कमाल गीत है। उम्मीद है आप भी इंजॉय करेंगे और मेरे तमाम लिसनर इंजॉय करेंगे। जी हाँ, देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो।

जी सामीन, दीवाना लेकर आया है दिल का तराना। क्या खूबसूरत आपने गीत सुना था पहले, जो कि हमने आपको लगा कि मैंने सिंगर का नाम रॉन्ग बता दिया था, वो जी किशोर कुमार की आवाज़ में था। तो हाँ जी, किशोर कुमार की आवाज़ में ही था। अगला गीत हम पेश करेंगे फ्लैशबैक के तौर पर, तो वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगी। लेकिन पहले हमें करना होगा टाइम चेक, टाइम चेक के बाद कमर्शियल ब्रेक, फिर होगा फ्लैशबैक। जी इस गीत के दौरान हमारी बात हुई सुहेल साहब से, जिन्होंने एक तो मेरी करेक्शन भी की और मैंने कहा ये छोटी मोटी गलतियां ऐसी करते रहने हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्शन, क्योंकि मैंने सिंगर का नाम रॉन्ग ले लिया था और ये बहुत बड़ी गलती होती है जो किसी आर्टिस्ट का काम

जी हाँ सामिन, आपने ये खूबसूरत सा गीत सुना, हमारा फ्लैशबैक गीत था, उम्मीद है आपने इंजॉय किया होगा। नदीम भाई, नदीम मंसूर, आपसे इस गीत के दौरान बात हुई, बहुत अच्छा लगा। हमारी कुछ कॉल्स मिस भी हो गईं, मोहम्मद बशारत जी और हीरा खान जी, आपकी कॉल्स मुझसे मिस हो गईं, प्लीज़ नेक्स्ट गीत के दौरान अगर हो सके तो दोबारा कर लीजिएगा कॉल। ऐसा करते हैं कि आपको चंद अशआर सुनाते हैं, फिर अगले गीत की जानिब आपको लेकर जाते हैं। जी हाँ, तो अशआर कुछ यूं हैं। रिश्तों की धूप छांव से आज़ाद हो गए, रिश्तों की धूप छांव से आज़ाद हो गए, अब तो हमें भी सारे सबक याद हो गए। आबादियों में होते हैं बर्बाद कितने लोग, हम देखने गए थे तो बर्बाद हो गए। मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग गीली जमीन खोद कर फरहाद हो गए। क्या खूबसूरत शेर है। बैठे हुए हैं कीमती सोफों पे भेड़िए, जंगल के लोग शहर में आबाद हो गए। वाह, लफ्जों के हेर फेर का धंधा भी खूब है, जाहिल हमारे शहर में उस्ताद हो गए। क्या ख्याल है, बहुत से लोग इस बात से इत्तफाक करेंगे। जी हाँ, इसके साथ ही हम अपने अगले गीत की जानिब बढ़ते हैं। तो अगला गीत है जी काजल वाले नैन, मोहम्मद रफी की आवाज में, डिफरेंट सा गीत है, एंजॉय कीजिएगा।

0: हाँ जी लूट लिया झांझर वाली ने ले जी, इतनी इतनी बातों पर लूट जाते हैं की करिए उन ताड़ा। जी जनाब, इस गीत के दौरान मोहम्मद बिशारत जी आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा, आपने आवाज़ की तारीफ की, प्रोग्राम की तारीफ की, ज़हे नसीब, बहुत शुक्रिया। आप लोगों का प्यार ही है जो चले आते हैं, आप लोग पसंद करते हैं प्रोग्राम को, आप लोग सराहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सी दुआएं दिल की गहराइयों से आपके लिए। बढ़ रहे हैं हम न्यूज़ ब्रेक की जानिब, क्योंकि एक मिनट बाकी है और हम आपको गीत की तरफ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि फिर गीत जो है वो हमें एक मिनट के बाद बंद करना पड़ेगा। तो एक दफ़ा फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि प्रोग्राम का जो आखिरी आवर होगा उसमें हमारे साथ डॉक्टर निगहत नसीम मौजूद होंगी। आप ज़रूर उस, वो बहुत बहुत मालूमाती प्रोग्राम है, मैंने बहुत मेहनत की है ये सब कुछ अरेंज करने में, क्योंकि ये जो डॉक्टर्स, बड़े डॉक्टर्स लोग होते हैं ना, क्योंकि डॉक्टर्स की भी कैटेगरीज होती हैं, तो जो अपने हॉस्पिटल में टॉप डॉक्टर्स और जिनका बहुत तजर्बा होता है और फिर वो उर्दू ज़बान बोलते हैं और वो पाकिस्तान का प्राइड होते हैं, वो जो होते हैं ना, उनके साथ अरेंजमेंट थोड़ा सा हार्डवर्क भी होता है, क्योंकि उनका टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ये बड़े लोग जो $200 लेते हैं जनाब अपनी अपॉइंटमेंट्स के, तो वो हमारे लिए टाइम निकालते हैं, कितनी खुशनसीबी है हमारे लिए। डेफिनेटली ज़रूर ज़रूर उस आवर को तवज्जो से सुनिएगा। हम कमर्शियल ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। नो, कमर्शियल ब्रेक नहीं, न्यूज़ के बाद, नेक्स्ट आवर में।
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
2: From the Stanley Centre at midday, Donald Trump claims the reunification of Ireland will eventually happen. The US President's been speaking in Dublin at the start of a two-day visit.
3: I don't want to cause any problems, but I will tell you, I'd love to see it unified. I have friends on both sides, great people. They're Irish people. How can they be bad, right? I think it would be a great feather in everybody's cap if that happened.
2: Sitting alongside Ireland's Prime Minister, he says the pair have discussed trade. Mr. Trump's also waded into the dispute between the UK and Argentina over the Falkland Islands, calling it a potential disaster. Reform's deputy leader insists the party's playing by the rules after accepting a record-breaking donation from a crypto billionaire. Ben Dello is giving £36 million, which he says will ensure a fair fight at a general election. The Ministry of Defence says there's no indication the armed forces played a role in this week's air traffic control meltdown. An FT report claims the outage was triggered by an error in a flight plan filed by a military jet. A man's been arrested on suspicion of murdering an 88-year-old woman who was found dead in Oxfordshire on Thursday. Police are treating Jill Gant's death in Abingdon as unexplained. Campaigners are urging those on both sides of the assisted dying debate to channel their energy into fixing palliative care. MPs voted to reject a proposed law in England and Wales yesterday. Actress Liz Carr was against the bill.
4: People are suffering now. Many things that we could do to change that and improve that for the majority of people. We need to do that first, then let's have a grown-up conversation about this. That's not happening at the moment.
2: And it's reported Lady Gaga's had a baby with fiancé Michael Polanski. The singer's kept a low profile in recent months but hadn't announced a pregnancy. She's pictured in US media carrying a baby in a sling. That's the latest. I'm Matt Steele.
0: वेलकम बैक सामीन, न्यूज़ ब्रेक के बाद आपको खुश आमदेद कहते हैं। एक दफ़ा फिर से बताती चलूं, जिन्होंने अभी अपने रेडियो सेट्स ऑन किए हैं उनकी इतला के लिए भी, कि मैं हूं नाही चट्ठा, आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हुई हूं। मेरा प्रोग्राम होता है एवरी सैटरडे, हर हफ्ता के रोज़ 11 से 2 बजे तक। जी हाँ, आप सुन रहे हैं सनराइज़ रेडियो 100.6 FM और 103.2 FM पर अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर। डेप पर आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, कीथली में, इल्कली में, स्किप्टन में, लीड्स में, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर और ईस्ट लंकाशायर यानी कि ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन, मिल्टन कीन्स और वेस्ट लंदन में। इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं ऑनलाइन एप्पल ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। वेबसाइट है जनाब www.sunrise.radio। इसके अलावा आपके लिए चंद और इन्फॉर्मेशन हैं जो कि हैं कि सनराइज रेडियो लिसनर्स चॉइस अवार्ड जल्द ही आ रहा है, इस कमिंग सून, सेलिब्रेटिंग बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, वेन्यूज एंड आर्टिस्ट यू लव। आपको वोटिंग करने के लिए आपको लिसनर्स क्लब का मेंबर बनना पड़ेगा जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। लिसनर्स क्लब का मेंबर बनने के लिए आपको फ्री कोई पैसे नहीं लगते, आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं सनराइज डॉट रेडियो पर, और फिर आप इसके बारे में मज़ीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं लिसनर्स क्लब को। जैसे ही आप मेंबर बनेंगे तो आपको मज़ीद मालूमात भी अवेलेबल हो जाएंगी जनाब। इसके अलावा फैंसी अ बिट ऑफ फन, कुछ हल्ला गुला चाहिए, कुछ फन चाहिए, तो विजिट सनराइज प्ले एंड हेल्प राज रेस बैक टू स्टूडियो इन सनराइज रेडियो रोश जी। टेस्ट योर फिल्म नॉलेज, आप एक हमारे क्विज में हिस्सा ले सकते हैं जिसमें अपना फिल्म के बारे में बॉलीवुड क्विज में हिस्सा लेकर आप चेक कर सकते हैं जी तानू किन्ना पता है गानियां दे बारे, फिल्मां दे बारे। हाँ जी, और डिस्कवर विच बॉलीवुड कैरेक्टर यू आर यानी कि आपकी शख्सियत किस कौन से बॉलीवुड कैरेक्टर से मिलती जुलती है, किदे नाल रलदे मिलदे हो, केड़े वाले एक्टर दे नाल। प्ले नाउ एट सनराइज डॉट रेडियो, ये आप खेल सकते हैं सनराइज डॉट रेडियो पर यानी कि इन क्विज में आप शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा फ्री में सनराइज रेडियो लिसनर क्लब जी जनाब। ये तो हमारे रेडियो का इंट्रोडक्शन था। एक दफ़ा फिर आपको याद दिला दूं कि अभी हमारा सेकंड आवर प्रोग्राम का शुरू हो चुका है और सेकंड आवर के बाद जो हमारा थर्ड आवर होगा डिस्कशन आवर में वो जनाब होगा हमारा बहुत बहुत बहुत स्पेशल आवर जिसमें हमारे साथ बहुत बहुत बहुत स्पेशल बहुत ही अहमियत के हामिल मेहमान मौजूद होंगी। डॉक्टर निगहत नसीम ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट वो जुड़ेंगी। उनका जो तफसीली तारुफ है वो मैं इस घंटे के आखिरी चंद मिनटों में करवाऊंगी क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह वो इतनी ज़्यादा खसूसियात की हामिल हैं कि उनका जो तारुफ है और जो उन्होंने काम किए हैं वो भी उसको भी पला हो जाए 15 मिनट लग देने दसने वास्ते कि इतने उनमें खसूसियात हैं और उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, उन्होंने बुक्स लिखी हैं, उनको क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं और वो इस वक्त क्या कर रही हैं। आप उनका तारुफ सुनकर सोचेंगे ऐसे भी लोग दुनिया में मौजूद हैं। जी हाँ, ऐसे भी लोग दुनिया में मौजूद हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ वो आज जुड़ने जा रही हैं पूरे एक घंटे के लिए। उन्होंने हमें टाइम दिया है, वो एडिक्शन पर बात करेंगी और हमारे इल्म में इजाफा करेंगी जनाब। बगैर किसी ताखीर के बढ़ते हैं अपने हिट ऑफ द आवर की जानिब। हिट ऑफ द आवर जनाब, है तो मज़ेदार हिट ऑफ द आवर इब्रारुल हक की आवाज़ में, हो गया नहीं प्यार। जी हाँ, इन्जॉय कीजिएगा, मिलते हैं हिट ऑफ द आवर के बाद। एंड जो टेलीफोन कॉल्स आ रही थी जब मैं बोल रही थी, बात कर रही थी, तो ऑफ कोर्स मैं टेलीफोन कॉल्स नहीं ले सकती ड्यूरिंग आई एम ऑन एयर। जब वो वक्त होता है कि मैं ऑन एयर होती हूँ तो फिर मैं कॉल नहीं ले सकती, लेकिन जब हम गीत सुनते हैं फिर आपसे बात होती है। जी हाँ, टेलीफोन कॉल दोबारा आने लग गई, मिलते हैं इस गीत के बाद। हमारे साथ रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा।
5: The hit of the hour is brought to you by Sophie Jewelers, with a wide range of designs of all kinds of jewelry. Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-014.

0: हो गया नहीं, हो गया नहीं तेरे नाल प्यार की गल है जनाब। इब्रारुल हक दी आवाज़ ते खूबसूरत जा गीत। जी हाँ, अब क्या है ऐसा कि मौसम बदल रहा है और पत्ते झड़ रहे हैं, उदासी वाला मौसम आ रहा है। हम सब ने कोशिश करनी है कि इस उदासी वाले मौसम में ज़िद करके खुश होकर दिखाएं। तो कोशिश तो करेंगे खुश रहने की और खुश रखने की। पंजाबी दा गीत सी ते एक ही में हो सकता है कि पंजाबी दा गीत होवे ते असीं तुहानूं पंजाबी दी शायरी ना सुनाइए। ना जी ना, ऐ नहीं होण देना। इंज जीवे परकार ने चक्कर दिता है। आपको पता है परकार क्या होती है? जो ज्योमेट्री में जब हम पढ़ते थे तो वो कंपास भी कहते हैं उसको। उसमें एक साइड पे पेंसिल लगती है, एक साइड पे पॉइंटी सी चीज़ होती है और उसे सर्कल बनाते हैं, चक्कर बनाते हैं। तो वो है, इंज जीवे परकार ने चक्कर दिता है, हर वारी सरकार ने चक्कर दिता है। बदला चलिया वांगर रोंदा फिरना है। बदला बादल को कह रहे हैं, बदला चलिया वांगर रोंदा फिरना है, तेनू भी दिलदार ने चक्कर दिता है। जो बारिश को कह रहे हैं, बदला चलिया वांगर रोंदा फिरना है, तेनू भी दिलदार ने चक्कर दिता है। जिस भी लुटिया सज्जन बन के लुटिया है, हाय जिस भी लुटिया सज्जन बन के लुटिया है, जद भी दिता प्यार ने चक्कर दिता है। मरनों बाद भी बंदे जींदे रहंदे ने, मरनों बाद भी बंदे जींदे रहंदे ने, मौता नू फनकार ने चक्कर दिता है। अब ये देखें कितना गहरा शेर है कि मौता नू फनकार ने चक्कर दिता है, यानी कि जो फनकार होता है वो मर भी जाता है तो उसका किया हुआ काम जिंदा रहता है। जैसे अभी हम पुराने गीत सुनते हैं और ये लोग दुनिया से चले गए हुए हैं और फिर भी क्या होता है कि जिंदा रहते हैं हमारे दरमियान, अपने काम की वजह से, अपनी आवाज़ की वजह से, अपने फ़न की वजह से। मरनों बाद भी बंदे जींदे रहते ने, मौता नू फनकार ने चक्कर दिता है। बहुत खूबसूरत जनाब। इसके ये उस्ताद तजम्मुल कलीम साहब का कलाम मैंने आपको सुनाया। तो हम ऐसा कर लेते हैं, आप कर लेते हैं टाइम चेक, और टाइम चेक के बाद जनाब एक खूबसूरत गीत आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे चौधरी मुजफ्फर साहब की तरफ से, तमाम उनके दोस्तों और तमाम सुनने वालों के नाम। चौधरी मुजफ्फर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ऐसा है कि हम मोहम्मद बशारत जी आपके लिए भी और चौधरी मुजफ्फर साहब के आपके लिए भी और आपके तमाम दोस्तों के लिए ये गीत होगा, लेकिन पहले करते हैं टाइम चेक।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 12:14, यानी कि 14:12, 12:15 होने के करीब ही हैं, चंद ही सेकंड्स में। बढ़ते हैं हम अपने कमर्शियल ब्रेक की जानिब। कमर्शियल ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: फ्री कोर्सेज एट शिपली कॉलेज, free teaching assistant courses, free health and social care courses, free child care courses, free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.
5: Who doesn't want to save money on their energy bills and improve their home at the same time? Home Energy West Yorkshire can help you do just that. They offer free, impartial and easy to understand advice, no matter the size of your home or budget. Find out more at their Bradford Interchange pop-up shop every Wednesday and Thursday between 10 and 4. You could even win a prize, including shopping vouchers and family days out. Search Home Energy West Yorkshire.

वेलकम बैक समय, हम कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस दौरान हमारी बात हुई तारिक जुल्फी जी से। तारिक जुल्फी जी, डेफिनेटली आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए हम गीत प्ले करेंगे इस गीत के बाद। पहला ये वाला जो गीत है जी, ये है चौधरी मुजफ्फर साहब की तरफ से तमाम सुनने वालों के नाम और स्पेशली उनके फ्रेंड्स के नाम। तो पहले बढ़ते हैं इस गीत की जानिब, उसके बाद तारिक जुल्फी जी आपकी फरमाइश का गीत होगा। सुनते रहिएगा सनराइज़ रेडियो।

जी हाँ, दम मारो दम, मिट जाए गम। जी हाँ, कोशिश करें कि दम मारने के बगैर ही गम को मिटा लें तो बेहतर है, क्या ख्याल है? और यही आज के हमारे नेक्स्ट आवर में बात होने वाली है कि दम मारने के बगैर कैसे गम को मिटाया जाएगा और जो दम मार के मिटाते हैं उनका क्या इलाज है। जी सबिन, हमारी बात हुई तारिक जुल्फी जी से। तारिक जुल्फी जी, आपकी फरमाइश का गीत आपकी खिदमत में आपके तमाम दोस्तों के नाम करते हैं और स्पेशली मोहम्मद मलिक मोहम्मद इसहाक जी आपके नाम करते हैं और तारिक जुल्फी जी के तमाम फ्रेंड्स, स्पेशली मलिक मोहम्मद इसहाक। बाकी सुनने वाले भी सुन सकते हैं जी। हौसला रखो, तसल्ली रखो, एंजॉय करो गीत नू।

जी हाँ, किसी शायर की गज़ल ड्रीम गर्ल, हेमा मालिनी को कहा करते थे ड्रीम गर्ल, और ये मेरे ख्याल गीत भी उन्हीं पर पिक्चराइज हुआ था, इफ़ आई एम राइट। तो समीन, अगले गीत पर जाने से पहले आपको चंद अशआर सुनाते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा हाफ एन आवर ब्रेक का टाइम हो जाएगा। हमें टेलीफोन कॉल मौसूल हुई इकबाल भाई की, बहुत शुक्रिया आपकी टेलीफोन कॉल का, प्रोग्राम को सराहने का, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। जनाब, जो हाफ एन आवर की ब्रेक के बाद गीत होगा वो करेंगे आपकी नज़र। तो चंद अशआर आपकी नज़र करती हूँ मैं, आपकी समातों की नज़र। अमजद इस्लाम अमजद की शायरी है, उम्मीद है आप पसंद करेंगे। मेरे हम सफ़र तुझे क्या खबर, मेरे हम सफ़र तुझे क्या खबर, ये जो वक्त है किसी धूप छाँव के खेल सा, इसे देखते इसे झेलते मेरी आंख गर्द से अट गई, मेरे ख्वाब रेत में खो गए, मेरे हाथ बर्फ से हो गए, कि जो एक रब्त था दरमियां वो बिखर गया। वो हवा चली किसी शाम, ऐसी हवा चली कि जो बर्ग थे सर शाख जां वो गिरा दिए, वो जो हर्फ थे वो जो हर्फ दर्ज थे रेत पर वो उड़ा दिए, वो जो रास्तों का यकीन थे वो जो मंजिलों के अमीन थे वो निशाने पा भी मिटा दिए। मेरे हम सफ़र है वही सफ़र मगर एक मोड़ के फ़र्क से, तेरे हाथ से मेरे हाथ तक वो जो हाथ भर का था फासला कई मौसमों में बदल गया, उसे नापते उसे काटते मेरा सारा वक्त निकल गया। मेरे हम सफ़र है वही सफ़र मगर एक मोड़ के फ़र्क से मेरे हाथ तक वो जो हाथ भर का था फासला कई मौसमों में बदल गया, उसे नापते उसे काटते मेरा सारा वक्त निकल गया। क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत, मोतियों की तरह प्रोया है ख्याल को लफ्ज़ों के। ब्यूटीफुल अमजद इस्लाम अमजद का बहुत ही खूबसूरत कलाम, उम्मीद है आपने पसंद किया होगा। सामने इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने कमर्शियल ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा सनराइज़ रेडियो।

जी सामीन, वेलकम बैक। आफ्टर कमर्शियल ब्रेक गीत की तरफ बढ़ते हैं। और ये जनाब हम इकबाल भाई आपके नाम करते हैं, तो आपकी तरफ से तमाम लोगों के नाम भी। सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो।

जी सामिन, ये तो आपने खूबसूरत सा गीत सुना, उम्मीद है आपने इंजॉय किया होगा। जनाब, इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की जानिब। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ इस। जी हाँ, सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो।

पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। लेकिन जनाब हम तो पर्दा उठाने लगे हैं जी। मैं बात करने लगी हूँ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए जो हमारी मेहमान हैं उनके बारे में, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ जाएंगी फ्लैशबैक गीत के बाद, और फिर हम उनसे बातों का सिलसिला, इंट्रोडक्शन होगा और फिर नेक्स्ट आवर में बातों का सिलसिला जारी रहेगा। तो जी डॉक्टर निगत नसीम हमारे साथ मौजूद होंगी नेक्स्ट आवर में, हमें आगाह करेंगी एडिक्शन के बारे में। तालीम उनकी है MBBS, MSc डिप्लोमा साइकोलॉजी, MD साइकाट्री, MPH पब्लिक हेल्थ एंड डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एज वेल। अब देखिए इतनी MBBS के साथ ये जर्नलिज्म और ये सब कुछ करना इट्स अ लॉट। जनाब मंसब जो है वो काम जो करती हैं, डॉक्टर हैं, माहिर नफ्सियात और माहिर मंशियात, नसर निगार, शायरा, सफ़र निगार, कॉलमिस्ट और स्पिरिचुअल हीलर हैं, नायब मुदीर आला आलमी अखबार और रेडियो और डिजिटल चैनल्स भी पे भी वो काम करती हैं। अदबी ज़िंदगी का आगाज़ पहली तहरीर जो की उन्होंने वो 1974 में किरण डाइजेस्ट में छपी थी, उसका नाम रिश्तों के जाल था, जिस पर उन्हें 200 रुपए इनाम भी मिला था। उस वक्त वो बहुत छोटी बच्ची थी और वो रिश्तों के जाल इतने बड़े लेवल की वो राइटिंग कर सकती थी उस टाइम। उनकी जो तसनीफ़ हैं, गर्द बाद हयात अफसानों का मजमुआ है, मिट्टी का सफ़र अफसानों का मजमुआ, सफ़ेद झील नज़मों का मजमुआ, यही दुनिया यहीं की बातें ये है उनके कॉलम्स और उनका मजमुआ, दुआओं के चिराग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयद साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और दूसरे आयमा पाक की अरबी दुआओं का उर्दू मंजूम मजमुआ। मंजूम मजमुआ का ये मतलब होता है कि वो नज़म की सूरत में उन्होंने वो उन

0: कैंसर हुआ और फिर उन्होंने उस पर सारा लिखा, माशाल्लाह वो सर्वाइवर हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम का शनासी का, हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम शनासी का सफ़र करबला पर मंजूम मंजरनामा, वरासत अफसानों का मजमुआ, सफ़रनामे उन्होंने लिखे, कुरान फहमी उन्होंने लिखी, ज़ेर तबा अफसानों का मजमुआ, कालमों पर मजमुआ और बहुत सी ऐसी हैं पाकिस्तान की झीलें और जो अभी उनकी बुक्स अभी हो रही हैं उन पर काम हो रहा है। एजाजात कई बार बेहतरीन राइटर का अवार्ड, मुख्तलिफ जराइद की तरफ से जर्नलिस्ट अवार्ड, रेडियो दो बार कोच ऑफ द ईयर, बेस्ट फिजिशियन ऑफ द ईयर मेडिकल अवार्ड, कंपेयरिंग में नौतरंग अवार्ड, इलामा इकबाल स्टडी सर्कल ऑफ ऑस्ट्रेलिया की जानब से कम्युनिटी की खिदमत और लिटरेचर पर अवार्ड, दीगर मसरूफियात तहकीक रिसर्च वो करती रहती हैं, दीगर सोशल प्रोग्राम्स में पाकिस्तान की तरफ से शमूलियत करना, घरदारी किताबें पढ़ना और मौसीकी सुनना, सियाहत ऑस्ट्रेलिया में और लंदन और कनाडा में बहुत ज़्यादा, उन्होंने बहुत से कंट्रीज़ में उन्होंने सफ़र किया है, पेरिस जर्मनी बेल्जियम हॉलैंड मलेशिया न्यूजीलैंड इंडोनेशिया और चंद अरबी ममालिक भी में भी वो सफ़र कर चुकी हैं। जनाब ये उनका मुख्तसर तारुफ है और आप देखिए कि आप मिलने जा रहे हैं इन शख्सियत से चंद लम्हों के बाद। बढ़ते हैं हम टाइम चेक की जानिब। टाइम चेक के बाद हमारा होगा कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक के बाद फ्लैशबैक गीत थोड़ा सुनेंगे, फिर उनसे इंट्रोडक्शन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, जुड़े रहिएगा, दिल थाम के बैठिएगा। बहुत ही आला शख्सियत से हम बात करने जा रहे हैं चंद लम्हों बाद।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: जी टाइम इस वक्त हुआ चाहता है 12:48, बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब, मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद।
2: Sunrise Radio.
1: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
1: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official Media Partner, Sunrise Radio.
5: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
6: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है, मेहंदी निकाह सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
5: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
6: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट लीड्स रोड ब्रेडफर्ड।
5: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 0127473732। जिनार रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

0: जी हाँ समीन, समा है सुहाना सुहाना। समा तो वाकई हमारे लिए बहुत ही सुहाना है क्योंकि हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी मेहमान डॉक्टर निघत नसीम जुड़ चुकी हैं और आई एम सो एक्साइटेड। असल में मेरी बहुत अच्छी सहेली हैं वो, और मैं उनसे अक्सर बात करती हूँ या तो सोने से बिल्कुल पहले, चंद मिनट पहले रात को, या फिर अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग यानी कि जागने के फौरन बाद, क्योंकि उनके टाइमिंग के हिसाब से, क्योंकि हमारा दिन होता है तो उनकी रात होती है, उनका दिन होता है तो हमारी रात होती है। जी ज़मीन, तो मेरी अक्सर उनसे बात होती है जब सुबह सुबह उनका फ़ोन आता है ना, सुबह 6 बजे, और वो मेरा बहुत खूबसूरत दिन होता है क्योंकि इतनी अच्छी शख्सियत से सुबह सुबह बात हो जाए तो क्या ही बात है कि अब मेरा दिमाग भी चलने लग जाता है। कुछ शख्सियत होती है ना, इंस्पायरिंग होती हैं बहुत ज़्यादा, उनसे बात करके लगता है कि नाहीद तुम क्या इस दुनिया में कर रही हो, जगह वेस्ट की हुई है, कुछ करो। उनसे बात करके दिल करता है कुछ अच्छा दुनिया में कर जाने का। तो सामीन, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर निघत नसीम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर निघत नसीम।
1: वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे लिसनर्स हैं तुम्हारे, इतने अच्छे लिसनर्स हैं।
0: हमारे बहुत अच्छे लिसनर्स हैं, ये ब्रेडफोर्ड के, ना सिर्फ ब्रेडफोर्ड के लिसनर्स हैं, ब्रेडफोर्ड के इर्द गिर्द भी बहुत एरियाज़ के हमारे ये लिसनर्स हैं, और इंतहाई इल्म वाले, समझ वाले, ज़ीरक लोग। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं यहाँ पे इन लोगों से मुखातिब होती हूँ। तो हम सब बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप आई हैं हमारे पास, और हम सब लिसनर्स का और मेरा बहुत अरसे से, कुछ वीक से इंतज़ार था कि आपसे मुलाकात हो।
1: आप सब लोगों का शुक्रिया, तुम्हारी टीम का, तुम्हारे खूबसूरत लिसनर्स का। वो म्यूजिक में कहते हैं ना कि उनके कान बड़े बारीक हैं, तो वो बारीक कानों वाले जो तुम्हारे लिसनर्स हैं उन सबको मेरा सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम उनकी तरफ से, बल्कि हम सब आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और मुझे बहुत शौक था कि मैं आपसे अपने लिसनर्स को मिलवाऊं। रीज़न ये है कि वो होता है ना बच्चा, जिस जब किसी के पास कोई अच्छी चीज़ होती है और उसका दिल होता है मैं सबको दिखाऊं, मेरे पास ये है, और मैं सबके आगे वो कहते हैं ना शो ऑफ करूँ कि मेरी फ्रेंड डॉक्टर निघत नसीम है, और मेरी अहमियत बढ़ जाती है। मैंने बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर निघत नसीम, हम ऐसा करेंगे कि हम बात करेंगे एडिक्शन के बारे में जब, जैसे ही हमारा नेक्स्ट आवर स्टार्ट होगा, तमाम लिसनर्स के लिए इतला के लिए उनकी अर्ज है कि अगर आप हमें ऑन एयर फ़ोन करना चाहें, अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 01274-306666 पर, यानी कि 01274 हमारा ब्रेडफोर्ड का कोड है और 306666 है हमारे स्टूडियो का नंबर। यहाँ पर आपकी कॉल रिसीव होगी, जिस दौरान हम आप डायरेक्ट अगर ऑन एयर बात नहीं करना चाहते, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास वो नहीं पसंद करते कि उनकी आवाज़ ऑन एयर जाए, तो आप हमें गीत के दौरान या छोटे वक्फ कमर्शियल ब्रेक के दौरान फ़ोन कर लीजिएगा, तो हम आपकी क्वेश्चन ले लेंगे। क्या ख्याल है डॉक्टर निघत नसीम, हम उनका क्वेश्चन ले लेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि जी बिल्कुल सही, तो हम ऐसा करेंगे कि हम आपका क्वेश्चन ले लेंगे। एक दफा फिर नंबर दोहरा देती हूँ, 01274-306666 ये है हमारा स्टूडियो की डायरेक्ट लाइन। तो समटाइम्स ऐसा होता है दो कॉल्स क्यू में होती हैं, तो हम उस वक्त कॉल्स ले सकते हैं। अगर आपने ऑन एयर बात करनी है तो फिर हम आपकी फ़ौरन कॉल ले सकते हैं, अगर आपने ऑफ एयर बात करनी है तो फिर हम सिर्फ उस सूरत में कॉल ले सकते हैं कि हम ऑन एयर नहीं हैं, यानी कि या तो कमर्शियल ब्रेक चल रही है या फिर कोई गीत चल रहा है। जिन्होंने अभी रेडियो सेट्स ऑन किए हैं उनको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निघत नसीम। डॉक्टर निघत नसीम, आप ऑस्ट्रेलिया के कौन से हॉस्पिटल में हैं, मैं फिर भूल गई।
1: मैं बैंकस्टाउन हॉस्पिटल में इस वक्त काम करती हूँ, लेकिन उसके साथ मेरे और भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ अगर उनको ज़रूरत हो मेरी तो मैं जाती हूँ उनको देखने के लिए।
0: अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर निघत नसीम इस वक्त बैंकस्टाउन हॉस्पिटल में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं ऑस्ट्रेलिया सिडनी में। मेरे लिए इतना ही कहना काफी होता है कि मेरी सहेली डॉक्टर निकट तसीम बहुत बड़ी डॉक्टर है, बस मेरे लिए यही बहुत होता है, वह बहुत बड़ी डॉक्टर है। तो जी सा मैं बहुत बड़ी डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, मेरी बहुत प्यारी सहेली, थैंक यू सो मच। एक जगह मैंने पढ़ा कि अगर आप एक जगह पे एक प्लॉट खरीदते हैं, मकान या प्लॉट खरीदते हैं, तो उसके हम साथ वाले प्लॉट में अगर उसको कोई कचरा की जगह बना देगा तो आपकी प्लॉट की कीमत ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। और अगर आपकी प्लॉट के साथ कोई आप कोई बहुत कोई मशहूर शख्सियत, आला शख्सियत मकान बना लेंगी तो आपके मकान की कीमत भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी तरह दोस्तों का होता है, हमारा कोई दोस्त हमारे साथ ऐसा जुड़ जाए तो हमारी कीमत भी ज्यादा हो जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो सामिन अब हम बढ़ते हैं न्यूज ब्रेक की जानिब, न्यूज ब्रेक के बाद नेक्स्ट आवर में आपसे मुलाकात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
2: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
3: From the Stanley Centre at One, Donald Trump says he'd love to see a unified Ireland and claimed it's going to happen eventually. The US president's made the remarks in Dublin as he met the Irish Prime Minister at the start of a two-day visit. He went on to joke about it during a speech at the embassy.
4: I gave a nice answer, I think. We'll read about it tomorrow. That's one of those questions where no matter what you say, no matter how well you say it, there's no good answer, right? I actually said it would be cool.
3: Downing Street's reiterated it's off the table. Labour claims the questions Nigel Farage faces over political donations are piling up as a crypto businessman hands over a record one-off sum of £36 million. Reform UK's deputy leader insists they played by the rules. The party denies wrongdoing in a separate investigation. University of Manchester political science professor Rob Ford gives us some context.
5: This single donation from a single individual is three times as much money as all the other parties combined took in the second quarter of this year. So we don't see donations like this in British politics very often.
3: And investigations found some peptides for sale on social media and 90% made up of unknown chemicals. The account they were bought from has closed, but experts warn an unregulated market's a health crisis waiting to happen. A driver's died and a car passenger's in hospital after a crash in Dundee yesterday morning. Police are appealing for dash cam footage around the Johnson Avenue area. England's cricketers are closing in on victory in the third test with Pakistan at Edgbaston. Short time ago, there were 23 for 2, chasing 130. And US media is reporting Lady Gaga's welcomed her first child with fiancé Michael Polanski. The singer didn't announce a pregnancy, but has hinted at it in a recent media interview. From Sky News, I'm Matt Steele.
0: वेलकम बैक सामेन, हम वापस आ चुके हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद, यानी कि प्रोग्राम के फाइनल आवर में हम दाखिल हो चुके हैं। एक दफ़ा फिर से आपको याद दिला दूं, जिन्होंने अभी अपने रेडियो सेट्स ऑन किए हैं, कि मेरा नाम है नाहिद चट्ठा, मैं आपकी खिदमत में एवरी सैटरडे फ्रॉम 11 टू 2 ये प्रोग्राम लेकर हाजिर होती हूँ, आपका और मेरा साथ रहेगा ठीक 2 बजे तक। अब के बाद आप सुन रहे हैं सनराइज़ रेडियो 100.6 FM और 103.2 FM अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर। जनाब आप डेप पर सुन रहे हैं, ब्रेडफोर्ड में, कीथली में, इल्कली में, स्किप्टन में, लीड्स में, हैलिफैक्स में, मैनचेस्टर में, ईस्ट लंकाशायर यानी कि ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एकरिंगटन, मिल्टन कीन्स, और अब आप सुन रहे हैं वेस्ट लंदन में भी। लेकिन अगर आप हमें डेप पर या FM पर नहीं कैच कर पा रहे तो आप एप्पल ऐप स्टोर पर या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा हमारी वेबसाइट www.sunrise.radio और फिर सुनिएगा हमारी आवाज़। और सनराइज रेडियो के खूबसूरत प्रोग्राम्स, यानी कि सनराइज रेडियो 24/7 आपके साथ होता है, आपकी खुशी में, गमी में, दिन में, रात में, बुढ़ापे में, जवानी में और बचपन में, यानी कि कहती जाओ गर्मी में, सर्दी में, हर मौसम में। तो सनराइज रेडियो आपका दिल बहलाने के लिए मौजूद है जनाब। आपके लिए और दो अनाउंसमेंट्स हैं कि अगर आप सनराइज लिसनर क्लब को ज्वाइन करें तो सनराइज रेडियो लिसनर चॉइस अवार्ड्स में आप हिस्सा लीजिए, जो कि बहुत ही जल्द आ रहा है, क्योंकि वो सेलिब्रेट करेंगे बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, वेन्यूज को और आर्टिस्ट को जो आप पसंद करते हैं, उसको उनको आप वोट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस सूरत में अगर आपने हमारे लिसनर सनराइज रेडियो के लिसनर क्लब को ज्वाइन किया है। जो लिसनर क्लब के मेंबर्स होंगे वो वोट कर सकते हैं, तो आप आज ही ज्वाइन कीजिए लिसनर्स क्लब, बिल्कुल फ्री है जी, कोई पैसे शैसे नहीं लगने, फ्री में तो आजकल कुछ भी मिले तो ले लेना चाहिए, क्या ख्याल है? तो वो पंजाबी में कहते हैं ना, फ्री च एक थप्पड़ भी मिले तो खा लेना चाहिए पंजाबी में कहते हैं, मैंने नहीं कहा। तो सामीन, आप हमें अगर आप लिसनर्स क्लब ज्वाइन करेंगे सनराइज डॉट रेडियो पे, तो आपको इसके बारे में मजीद क्या उसे कहते हैं मालूमात मिल जाएंगी जी सामीन। तो अगला है जी हमारा अनाउंसमेंट कि अगर आप पसंद कर रहे हैं कुछ हल्ला गुल्ला, कुछ फन, तो फिर आप विजिट सनराइज प्ले एंड हेल्प राज रेस बैक टू द स्टूडियो इन सनराइज स्टूडियोज रोश। टेस्ट योर फिल्म नॉलेज, अपना फिल्मों के बारे में नॉलेज टेस्ट करें भाई, नॉलेज नॉलेज होता है किसी चीज़ के बारे में भी हो। बॉलीवुड के बारे में क्विज होगा और आप डिस्कवर कर सकते हैं कि आप बॉलीवुड के किस करेक्टर से मिलते जुलते हैं। अपने वालों ही ना अंदाजे ला लेना, चेक करना बकायदा, क्या पता कुछ बेहतर निकल आए। तो ऐसा है कि ये सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं अगर आप सनराइज डॉट रेडियो पर लिसनर्स क्लब ज्वाइन करें। तो जी सामिन, अब हमारा वक्त हुआ चाहता है हिट ऑफ द आवर सुनने का। हिट ऑफ द आवर इब्रार उल हक की आवाज़ में दोबारा से सुनिए, और फिर उसके बाद होती है हमारी डॉक्टर निगत नसीम से बात, क्योंकि मैं चाहूँगी कि मैं बहुत बहुत कम टाइम और चीज़ों पर लगाऊँ, क्योंकि ये डॉक्टर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनका तो एक एक मिनट कीमती होता है और इन्होंने हमारे लिए पूरा घंटा निकाला है। क्या बात है जी, हमारी क्या किस्मत सुनते हैं हिट ऑफ द आवर, मिलते हैं हिट ऑफ द आवर के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
6: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire, telephone 0800 015 7866.

0: हो गया नहीं, हो गया नहीं तेरे नाल प्यार। सही गल है जी, होया ही रहन दो, अजकल प्यार दी बहुत कमी है हर जगह। क्या ख्याल है, कहो नहीं जिस जिस के साथ होता है खुलेआम लगे रहो अपने खर्चे पे। तो जी जनाब, आप थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर निगर नसीम मौजूद है। डॉक्टर निगर नसीम, हमारे पास 5 मिनट्स हैं कमर्शियल ब्रेक से पहले, तो हम ऐसा करते हैं कि आपकी इजाज़त हो तो बढ़े हम टॉपिक की जानेब और एडिक्शन के बारे में बात करें। हमारे लिसनर्स इंतज़ार कर रहे होंगे।
1: जी शो कोई मसला ही नहीं है। बस पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी कि मुझे एडिक्शन पे बोलने का मौका मिला है। एडिक्शन मेरी स्पेशलिटी है, आई लव दैट। वजह इसकी यह है कि इसके अंदर आप एक पेशेंट, सिर्फ एक पेशेंट नहीं देख रहे होते हैं, आप एक पूरी फैमिली को देख रहे होते हैं। क्योंकि जो बीमारी होती है वो पूरे खानदान को साथ लेके चलती है। बंदा एक होता है, एक बच्चा या बड़ा, कोई औरत, कोई बच्ची, कोई लड़की, वो एक एक बीमार होता है, एक नशा करता है, लेकिन उसके साथ पूरा घर इफेक्टेड होता है।
0: बिल्कुल ऐसा ही।
1: इसलिए मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक एक बच्चे को या एक एक इंसान को नहीं देख रही होती, मैं उसकी पूरी फैमिली को देख रही होती हूँ। और हमारी अप्रोच बहुत होलिस्टिक अप्रोच होती है। तो इससे पहले कि आप मुझसे कोई सवाल करें, मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपको एडिक्शन के बारे में बताऊं कि एडिक्शन पे बात करने से पहले हमें 3 बातों का ध्यान रखना होगा।
0: जी।
1: पहली तो ये कि आदत क्या होती है, फिर डिपेंडेंस क्या होती है, और फिर उसके बाद एडिक्शन क्या होती है। हम क्या करते हैं कि अगर किसी ने 4 प्यालियां चाय की ज्यादा पी लिया ना, और तुम्हें तो कैफीन की एडिक्शन लग रही है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता।
0: अच्छा, वो आदत होती है
1: कि जब वो आदत होती है, आदत क्या होती है कि जिसमें आपको खुद पर कंट्रोल होता है।
0: सही।
1: आप उसे बदल सकते हैं।
0: सही।
1: जैसे हम कॉफी पीते हैं, अगर हमें 2-3 दिन नींद नहीं आई है रात को अच्छी सी, तो हम उसको छोड़ देते हैं, है ना। कितना आसान है, हमारा कंट्रोल भी है, हम अपनी आदत छोड़ भी सकते हैं, हम उसको चेंज करके हम लाइट पे आ जाते हैं। जैसे प्रेगनेंसी में कैफीन को नॉन कैफीन पे हम चेंज कर देते हैं।
0: अच्छा।
1: तो ये होगी आपकी आदत।
0: सही।
1: तो और उसके बाद हाँ, हम आते हैं डिपेंडेंस के ऊपर। डिपेंडेंस क्या होती है कि इसके अंदर आपको क्रेविंग्स होती है।
0: अच्छा।
1: और आपको लगता है कि आपको कंट्रोल थोड़ा थोड़ा सा कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर ये अल्कोहल में होता है, शराब पीने वाले जो होते हैं ना। जैसे उन्होंने शुरू में कहा कि हम तो सिर्फ एक ही ग्लास पीते थे एक दो हफ्ते तक, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि आप उसके ऊपर डिपेंड करने लग गए हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि हाँ, मुझको मेरे पेशेंट आते हैं ना, मुझे कहते हैं कि मैं तो सिर्फ 15 दिनों में एक ही बार में नशा करता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहने कि वो जो मुझे तनख्वाह मिलती है ना, तो पे डे होता है फोर्टनाइटली, तो मैं फिर इसके बाद नशा करता हूँ। ठीक है, एक तो ये एक आदत हो गई, आदत हो गई।
0: अच्छा,
1: ये समझो कंपल्शन आ गई है उसकी।
0: अच्छा।
1: कुछ लोग कहते हैं मुझसे कि नहीं, जो मेरे फ्रेंड्स आते हैं ना, मेरे इस तरह के फ्रेंड्स हैं, उनको नो नहीं कह सकता।
0: अच्छा।
1: फ्रेंड्स की हाँ, फ्रेंड्स की कंपल्शन आ गई।
0: हाँ।
1: आज तो न्यू ईयर था, है ना, मेरी सालगिरह का दिन था। अच्छा, और तो और जब ये जो होते हैं किसी भी जुर्म में पकड़े जाए, तो जब वो जेल से आते हैं ना बाहर, तो फिर उनकी पार्टी होती है जेल से रिलीज होने के बाद।
0: अच्छा।
1: उसमें भी
0: तो इसको तो हम हाँ इसको तो हम पीयर प्रेशर भी कह सकते हैं ना। पीयर प्रेशर ये होता है कि जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, सोसाइटी का प्रेशर, कम्युनिटी प्रेशर, हाँ जी पियो पियो यार, पी लो, कुछ नहीं होता, एक बार पी लो।
1: नहीं नहीं, ये वाला जो प्रेशर होता है ना, बिल्कुल वजूहात में प्रेशर जरूर आता है। अगर हम एडिक्शन की वजह मालूम करें तो प्रेशर जरूर आता है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ये डिपेंडेंस है। डिपेंडेंस में क्या है, आपका कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है और आप उसके डिपेंडेंट हो गए हैं। ठीक है।
0: हाँ।
1: अब थर्ड ग्रेड में जब आते हैं, तो फिर आपकी फुल फ्लेज एडिक्शन हो जाती है। उसमें जब हम डिपेंडेंस की बात करते हैं, तो उसमें 2 तरह की डिपेंडेंस होती है। एक तो फिजिकल डिपेंडेंस, एक होती है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस।
0: अच्छा।
1: और एक होती है बिहेवियरल डिपेंडेंस।
0: अच्छा।
1: बिहेवियरल डिपेंडेंस, हाँ, तो अब इसमें क्या है कि आपको फिजिकल डिपेंडेंस में कि अगर आप वो नहीं लेंगे तो आपको अपना जिस्म टूटा टूटा सा लगता है, पेशेंट हमें बताता है कि उसको नींद अच्छी नहीं आई है, उसका दिल नहीं लग रहा, उसको धड़कन तेज हो रही है उसकी और ब्लड प्रेशर भी बहुत हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है।
0: अच्छा,
1: ये तो होगी आपकी फिजिकल डिपेंडेंस है। अब अगर कोई कह रहा है कि मुझे साइकोलॉजिकल लाइक इरिटेबल एंजाइटी डिप्रेशन और समटाइम्स साइकोसिस एज वेल, तो वो आपकी आपकी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो गई। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल किसी को गेमिंग की डिपेंडेंस है, किसी को गैम्बलिंग की डिपेंडेंस है, तो ये फुल फ्लड डिपेंडेंस से पहले एक बिहेवियर डिपेंडेंस है, ये आपका बिहेवियर है।
0: अच्छा अच्छा डॉक्टर, सॉरी डॉक्टर निकेत, हमें अभी टाइम चेक करके कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा, फिर दोबारा आपके साथ जुड़ना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी, ये वाली जरूरी ब्रेक्स हम करते रहेंगे। थैंक यू जी सामिन, अब करते हैं टाइम चेक के बाद कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
2: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि टाइम हुआ चाहता है 1:15, यानी कि 1:15 past 1। बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब और कमर्शियल ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात।
3: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम, इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
3: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.
0: जी सामिन, हम वापस आ चुके हैं ब्रेक के बाद। डॉक्टर निगत नसीम हमारे साथ हैं और जहां से बात का सिलसिला टूटा था डॉक्टर निगत नसीम, हम वहीं से शुरू करते हैं। तो आप आदत की बात कर रहे थे।
1: हाँ जी, हमने आदत की बात की, हमने डिपेंडेंस की बात की, अब नंबर ग्रेड पे आगे चलते हैं तो एडिक्शन आती है। अब एडिक्शन में क्या खसूसियत होती है, एक बात और जुड़ जाती है कि एक आपको लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया, ठीक है, आपको डिपेंडेंस हो गई। अगर आप नहीं लेंगे तो आपको तबीयत भी खराब होगी, आप जहनी तौर पर बीमार हो जाएंगे, और उसके बाद एक खास बात जुड़ती है, वो ये होती है कि आपको मालूम होता है कि ये एक खराब आदत है, उसकी वजह से आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं घर में, आपकी पढ़ाइयां इफेक्टेड हो रही हैं, नौकरी छूट गई है, माँ बाप से दूरी आ गई है, बहन भाई आपस में बात नहीं कर रहे हैं, दोस्तों ने भी छोड़ रखा है। इन सारे नुकसान के बावजूद
0: जी
1: आप वो शख्स जो है फिर भी यूज कर रहा है, तो फिर इसको हम कहेंगे एडिक्शन।
0: अच्छा,
1: इसीलिए हाँ, जब एडिक्शन के हम डायग्नोसिस करते हैं ना, तो हमारे पास क्राइटेरिया होता है कि एक साल के अंदर उसने कितनी बार यूज की, कितनी बार छोड़ने की कोशिश की, उसकी पहली दफा उसने कैसे क्या इस्तेमाल किया था, क्या वो 2-3 ड्रग्स एक साथ लेता है या एक ही ले रहा है, जो भी हो, ये सारा कुछ हम असेस करने के बाद हम ये देखते हैं कि इसको माइल्ड डिपेंडेंस है कि मॉडरेट है कि सीवियर डिपेंडेंस है।
0: तो डॉक्टर निगम, ये भी, सॉरी मैं आपकी बात बीच बीच में काट देती हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन उससे रेलेवेंट होता है, तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को मल्टीपल ड्रग्स की भी डिपेंड वो होती है एडिक्शन, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ एक, हम बचपन में सुना करते थे कोई हेरोइन पीता है या कोई कोकेन पीता है या कोई शराब, एक चीज नहीं, वो 2-3 चीजें इकट्ठी पी रहे होते हैं।
1: नहीं नहीं, ये नहीं होता, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो लोग शराब को पसंद करते हैं फिर वो शराब ही पीते हैं।
0: अच्छा।
1: अगर उसके साथ शराब, देखो इसमें क्या होता है कि कुछ दवाइयों के ग्रुप्स होते हैं, एक अपर जिसको हम कहते हैं कि ये स्टिमुलेंट्स हैं, जिसमें कोकेन आएगा, आइस आएगी, एलएसडी, एक्सटेसी, इस तरह की चीजें आएंगी, ठीक। एक होते हैं डाउनर्स जिसके अंदर हेरोइन आती है, और डालमस में डाइजेपैम भी आती है, कोडीन भी आती है, मॉर्फिन भी आती है, फेंटेनिल भी आती है, इसके अंदर अल्कोहल भी आ जाएगी। हालांकि हम अल्कोहल को बिल्कुल अलग रखते हैं क्योंकि अल्कोहल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट, बहुत बड़ा टॉपिक है और उसकी जिस्मानी बीमारियां बहुत पैदा होती हैं और दिमागी बीमारियां भी, और इसलिए हम अल्कोहल को एक बिल्कुल अलग ब्रांड के तौर पे एक साइड में रख देते हैं और इधर से सब्सटेंस जो होते हैं हेरोइन और कोकेन वगैरह हम वो एक अलग तरीके से रखते हैं। ये जो लोग हेरोइन लेते हैं वो ज्यादातर पसंद करते हैं कि वो डाउनर्स लें।
0: अच्छा।
1: जैसे हाँ बेंजोडाइजेपिन मिला के ले लेंगे या उसके साथ वो कैनबिस लेंगे। अच्छा, बहुत औकात हमने ये भी देखा है कि अगर उन्होंने स्टिमुलेंट्स ले लिया, जैसे कोकेन बहुत ले लिया है, आइस बहुत ले लिया है, उसके नशे को यानी कि वो इतना हाई हो जाते हैं ना कि उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करें, उनकी थॉट रेस करती है, उनकी बातें रेसिंग होती है, लाइक उनको खुद अपनी समझ नहीं आ रही होती, लोगों को भी नहीं आ रही होती और उनको इतना इल्यूजन और डिल्यूजन हो जाता है कि फिर वो उसके लिए हेरोइन लेते हैं, एक किस्म का पैटर्न बन जाता है।
0: अच्छा।
1: या वो लोग डाइजेपैम ले लेंगे या उसके बाद कुछ और ले लेंगे। ठीक है, तो ये एक किस्म का ना एक इनका पैटर्न होता है, हर इंसान का, हर पेशेंट का एक डिफरेंट पैटर्न होता है कि वो एक साथ भी लेते हैं, एक के बाद दूसरी भी लेते हैं ड्रग्स इस तरह करके। तो ये एक पर्सनल चॉइस ही बन जाती है, या जिस ग्रुप पे बैठ के वो नशा कर रहे होते हैं वो नशा किस तरह का करते हैं वो उसका भी एक पैटर्न बन जाता है।
0: तो पता तो कैसे चले कि कौन सा बंदा कौन सा नशा कर रहा है, ये पता चल जाता है? फर्ज करे, फॉर एग्जांपल घर में अगर आपकी फैमिली मेंबर कोई बच्चा, खुदा ना खास्ता, क्योंकि अभी यहाँ पे इतना ट्रेंड हो रहा है, बच्चे बेचारे इस चीज में जा रहे हैं, तो अगर किसी की फैमिली में कोई बच्चे ने शुरू कर दिया, पता कैसे चले कि ये बच्चा नशा कर रहा है या कोई क्या चीज पी रहा है या क्या ले रहा है?
1: अपना बहुत आसान है उसको मालूम करना। वो बच्चा क्या होता है कि वो खामोश हो जाएगा, ठीक है, और जब आप उससे बात करेंगे तो वो इरिटेबल होगा, उसको गुस्सा आएगा हर बात पे, और वो आहिस्ता आहिस्ता फैमिली से कटना शुरू हो जाता है, उसके ग्रेड्स गिर जाते हैं, ठीक है, और वो कहीं भी जहाँ फैमिली गैदरिंग्स होंगी वहां जाना पसंद नहीं करेगा, कहीं वो जाहिर ना हो जाए। लेकिन नाहिद, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जिन घरों में जवान बच्चे बच्चियां टीनेजर्स जो होते हैं वो जब ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं तो इसमें जो फैक्टर होता है ना, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो बच्चा जो है उसके साथ कहीं ना कहीं ज्यादती हो रही है। हो सकता है कि वो साइबर बुलिंग का शिकार हो रहा हो सकता है कि वो अपनी स्कूल में बुलिंग का शिकार हो रहा हो सकता है कि वो घर में जब चार पांच बच्चे एक साथ रह रहे होते हैं, बहन भाई, कभी कभी उनकी बुलिंग का शिकार हो जाता है, कभी कभी वो इमोशनल निग्लेक्ट पेरेंट्स की तरफ से हो जाता है, पेरेंट्स कामों में लगे रहते हैं। देखो, हम एक बहुत हेक्टिक लाइफ गुजारते हैं, तुम्हारे यहाँ भी हमारे यहाँ भी, तो उसमें बहुत आसान है बच्चों को हम नजरअंदाज कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं फिर वो स्क्रीन के साथ जुड़ जाते हैं, आजकल तो ये बड़ा प्रॉब्लम है ना, सोशल मीडिया के पास आ जाते हैं। सोशल मीडिया, अब मैं कभी भी कतन इस चीज को बुरा नहीं कहती, मैं कहती हूँ स्क्रीन बुरी नहीं है, जो स्क्रीन के ऊपर वो देखा जा रहा है वो बुरा, अच्छा हो
0: उसका इस्तेमाल है वो बुरा, ये भी एक अलग एडिक्शन है ना, ये भी तो एक एडिक्शन है।
1: वो एक बहुत बड़ा, ये बिहेवियरल एडिक्शन में आ जाएगा, एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये भी। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो वहां से भी नॉलेज ले रहे होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हमारी न्यूक्लियर फैमिली का बहुत ताल्लुक है, डिसफंक्शनल फैमिलीज का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि शौहर कहता है बीवी से कि तुमने बच्चे बिगाड़ दिए हैं, वो कहती है कि आपने कर दिया है। तो एक इस तरह का मुकाबला जो है वो आपस में लड़ाई झगड़ा, लेकिन जिसके लिए कर रहे होते हैं उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इसके अंदर बहुत बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जब कोई बच्चा इसमें शामिल होता है, मतलब इसका शिकार होता है। माँ बाप को पता लग जाना चाहिए बच्चा इरिटेबल है, खाना नहीं खा रहा है, मिलजुल नहीं रहा है, ग्रेड्स गिर रहे हैं, और वो आइसोलेशन में रहना पसंद करने लग गया है। अगर सुबह को सोए जा रहा है, रातों को जाग रहा है, या रातों को सो रहा है तो सुबह जल्दी उठ रहा है, यानी कि आपको इतना विजिलेंट हो के अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए कि आपको एक एक चीज का पता लगना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है।
0: इतनी आप बारीक नजर रखें बच्चे पे,
1: बारीक नजर अपनी पड़ती है, और हम क्या करते हैं, डांट देते हैं, चलो आओ खाना खाओ, चलो आओ नमाज पढ़ो, चलो आओ ये करो वो करो। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बिहेवियर में डिफरेंट हो रहा है, तो हमें उसको बिठाकर पूछना है कि बेटे थोड़ी सी मैं चेंजेस फील कर रही हूँ, कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो? हमारे पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है।
0: हाँ बिल्कुल, ये बात है,
1: कम्युनिकेट कर सके, है ना, कम्युनिकेशन नहीं है हमारी अपने बच्चों के साथ।
0: हाँ, बल्कि अक्सर होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो एम्बैरस फील करते हैं ऐसी चीजें बताने वक्त भी। तो मैं अक्सर अपनी बेटी को ये कहा करती हूँ, बेचारी जो यूनिवर्सिटी में है, तो मैं उसे कहती हूँ, बेटा अगर आपको लगे कि आप कोई चीज मुझे नहीं बता पा रहे, जस्ट लेट मी नो इफ आई कैन हेल्प यू एनीवेयर, अगर मैं आपको कहीं पे मदद कर सकती हूँ तो प्लीज आप मुझे बताओ, और मैं आपके लिए हूँ यहाँ पे, कुछ भी हो जाए तो आप सबसे पहले मुझे बता सकते हो। यानी इस तरह बच्चे को कंफर्ट देना तो चाहिए।
1: आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, कम्युनिकेशन चैनल को ओपन रखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैंने अपने पेशेंट्स में ये देखा है कि माँ बाप जो होते हैं वो उम्मीद छोड़ देते हैं, वो कहते हैं इससे सुधरना नहीं है, तुम हमारे घर से निकल जाओ, जाओ बोलिए बिस्तर समेटो। मैं तुम्हारी इस प्रोग्राम के तवसुत से, मैं पेरेंट्स से जो भी मेरा हम दोनों को सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये ट्रीटेबल है।
0: अच्छा,
1: ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स जरूर है, परेशान कौन जरूर है, आपको तकलीफ दे भी होगा, पैसे भी लगेंगे, सबसे ज्यादा तो आपको लगेगा जैसे आपकी इज्जत पे हर्फ आ रहा है, आप फील कर रहे हैं इन्फीरियर, ऐसी समझने की जरूरत नहीं है, ये ट्रीटेबल है, हर लेवल पे ट्रीटेबल है।
0: अच्छा, हर लेवल पे, यानी कि आप कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं जी आप तो ये इस स्टेज पे आ गए, अब नहीं ठीक हो सकता, हर लेवल से वापिस आ सकता है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल आ सकता है, इसलिए कि मैं कहती हूँ कि मैं जब सुबह जब अपने हॉस्पिटल जाती हूँ तो मैं अपने स्टाफ से ये कहती हूँ कि मुझे ये बताओ मेरे सारे मरीज जिंदा है ना, तो हाँ, मैंने कहा ठीक है, बस काम खत्म हो गया मेरा। इसलिए कि मैं सोचती हूँ कि अगर कोई मरीज जिंदा रहेगा तो मैं इलाज कर पाऊंगी ना उसका, अगर कोई चला जाएगा तो मैं क्या कर लूंगी उसका, है ना। तो मैं ये सोचती हूँ कि हर कदम पर, हर मोमेंट पर उसका इलाज मुमकिन है।
0: सही,
1: इलाज पर ध्यान देना है, कॉम्प्लेक्स जरूर है, लंबा भी है, और उसके अंदर क्या होता है, वो नहीं तुम्हें याद है वो जो खेलते हैं लिडो खेलते हैं जो सांप सीढ़ी वाला जो होता है?
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये जो हाँ ये जो एडिक्शन है ना, एडिक्शन के सांप सीढ़ी वाला खेल है, यूं समझो।
0: अच्छा,
1: आपने इलाज शुरू किया, चौथे पे आके आप नीचे गिर गए, समझे, रिलैप्स हो गए। अच्छा आपने, हाँ फिर हमने जीरो से शुरू किया, कभी कभी तो अपने नानवे पे नीचे आ जाते हैं।
0: हाँ, उन्हें नानवे वाला सब लड़ जाता है।
1: हाँ, अरे सब लड़ जाता है। तो हाँ, तो ये सांप सीढ़ी का जो खेल है, इसमें टाइम लगता है, इसमें डिसअपॉइंटमेंट्स भी होती है, इसमें आपको रोना भी आता है कि हम फेल हो रहे हैं, लेकिन बखुदा आप यकीन रखिए आप फेल नहीं हो रहे, आप एक जिंदगी को बचा रहे हैं, बचा रहे हैं। मेरे पेशेंट कई बार ऐसा होता है, रिलैप्स होते हैं, दोबारा से यूज करते हैं, वो फिर मेरे पास आते हैं, बहुत डरते डरते बताते हैं, मैंने कहा इसमें डरने की बात ही कोई नहीं है, हम दोबारा से काम शुरू करते हैं, दोबारा से शुरू हो जाए काम। तो उनका हमारी क्लिनिक तक आना, उनका हमसे मदद मांगना, ये इतनी बड़ी बात है कि मैं तुमको क्या बताऊं। बुखार होता है ना इंसान को, वो चला जाता है, इसलिए कि उसको उसमें शर्मिंदगी नहीं है, स्टिग्मा नहीं है उसको, है ना, कोई स्टिग्मा नहीं है। इवन आपको कैंसर है, कैंसर जो बीमारी है, आपको पूरी दुनिया आपके ऊपर आपके लिए दुआएं करने लग जाती हैं, ठीक है,
0: सही है, सही।
1: और ये जो एडिक्शन है, ये जो नशा है, ये कैंसर से भी बड़ी बीमारी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कैंसर ट्रीटेबल नहीं है, बाजू का ट्रीटेबल नहीं होता
0: जी।
1: तो फिर भी हम उसके लिए दुआएं कर रहे होते हैं, दुनिया जहान की चीजें लेके जा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, लेकिन एक बीमारी जो उससे वर्स है, लेकिन हम उसको ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, हमें स्टिग्मा है इसके ऊपर, हमारे पे लेबल है। कितनी अजीब बात,
0: कितनी इंपॉर्टेंट बात है, आंखें खोलने वाली बात है ये। सही, डॉक्टर हमारा चंद सेकंड में कमर्शियल ब्रेक का टाइम होने वाला है, तो आई एम रियली सॉरी, मेरा दिल नहीं चाहता है कि ये तसलसल बात का टूटे, लेकिन अफसोस कि हमें जाना भी पड़ेगा, और हाँ जी, और फिर मैं आपसे वापस मिलूंगी कमर्शियल ब्रेक के बाद, तो फिर हम मज़ीद इस पर बात करेंगे। यूँ तो लग रहा है कि इतनी जल्दी इतना टाइम गुजर गया, और क्या कहिए, बहुत खूबसूरत बातें कर रही हैं आप, थैंक यू सो मच। समय बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जाने, मिलते हैं इसके बाद।
5: Looking for a quality home to rent?
6: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
5: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
7: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org. or www.guruma.com.
0: Sunrise Radio. जी सामीन, वेलकम बैक। मैंने गीत ब्रेक के बाद बिल्कुल भी नहीं लगाया, क्योंकि हमारे पास जो ये कीमती टाइम है, मैं चाहती हूँ कि हम डॉक्टर निगत नसीम से और मालूमात लें। तो डॉक्टर निगत नसीम, ओवर टू यू।
1: थैंक यू। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि एक इंसान को स्टिग्मा देकर या खुद पे स्टिग्मा लगा के कि मैं एक इसकी माँ बाप हूँ, फलाना ये वो, अपने आप को जाया मत करें और अपने मरीज को भी जाया नहीं होने दें। मैं बता रही हूँ कि ये बहुत मुश्किल जर्नी है, बहुत ज्यादा, लेकिन ये ट्रीटेबल है, ट्रीटेबल है।
0: अच्छा, हर किस्म का नशा ट्रीटेबल है, ये कोकेन, हेरोइन और भी बेशुमार, आइस, ये वो, ये सब कुछ ट्रीटेबल है, कोई भी इनमें ऐसा नहीं है जो अनट्रीटेबल हो
1: ना, कोई भी ऐसा नहीं है। देखो, ये वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू नो कि दुनिया भर में इस वक्त मेरे बिल्कुल लेटेस्ट मैं तुमको नंबर्स दे रही हूँ, 331 मिलियन लोग ड्रग्स यूज कर रहे हैं इस वक्त।
0: पला जाए, कोई और काम लगो।
1: 331 मिलियंस, ओके,
0: 331 मिलियंस, वाओ,
1: मिलियन लोग। अच्छा, अब इन लोगों में कैनबिस लेने वाले 256 मिलियंस है। ये सबसे कहते हैं ना, इसका जो समझ लो कि 40% दुनिया में लोग ले रहे हैं, ये इतनी पॉपुलर कैनबिस है। वजह इसकी ये है कि जैसे हमारे मुल्क में, तुम्हारे मुल्क में और मुल्क में ये लीगल है, ठीक है ना, ये लीगल है।
0: हाँ, हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन अमेरिका में लीगल है, हमारे यहाँ अभी लीगल नहीं है, फिलहाल इस पे गौर हो रहा है।
1: कनाडा में लीगल है,
0: हाँ, कनाडा में, अमेरिका में लीगल है, बिल्कुल बिल्कुल,
1: हमारे पास भी लीगल है। तो ये नंबर वन, 256 मिलियन पीपल लोग यूज करते हैं, 63 मिलियन हेरोइन यूज करते हैं, कोकेन 25 मिलियन यूज करते हैं, और अल्कोहल यूज करने वाले, कुछ बिलीव था, 2.3 बिलियन लोग शराब पीते हैं।
0: ओए भला जहर, ये तो बहुत ज्यादा,
1: 2.3 बिलियन शराब पीते हैं, और उनमें से 400 मिलियन को अल्कोहल यूज डिसऑर्डर है। इसका मतलब क्या है कि या तो उनका जिगर खराब होगा, या उनकी गुर्दे खराब हो चुके होंगे, या मेंटली उनको दौरे पड़ रहे होंगे, तो यानी कि बीमार लोग, उनमें से 400 मिलियन है, ठीक है। अब अगर आप देखें कि पूरी ड्रग एंड अल्कोहल से मरने वालों की जो तादाद है हर साल, पिछले साल जो पूरे साल की मिली है मुझे, वो 2.6 मिलियन लोग मरे हैं इसमें।
0: इन्होंने इलाज नहीं कराया, इन्होंने ये लेते रहे और फिर ये मर गए।
1: नहीं, कुछ लोग ने इलाज नहीं करवाया, कुछ लोग इलाज करवाने के साथ साथ ड्रग्स भी लेते रहते हैं, वो भी मैं बताऊंगी अभी कैसे।
0: अच्छा।
1: लेकिन ये लोग किसी भी कॉम्प्लिकेशन से मरते हैं। देखो जो अल्कोहल है ना वो इटसेल्फ जहर है, ठीक है
0: जी।
1: आप कतरा कतरा पिए या बहुत सारा एक साथ पिए, ये जहर है। आपके जिस्म को खराब करेगा, आपके हार्ट को अटैक करेगा, आपको दिमाग में जो है ना
0: किडनीज में
1: टाइप के सीजर्स वो भी होंगे, ठीक, किडनी भी जाएगा, सबसे ज्यादा तो लिवर खराब हो जाता है आपका। अच्छा। तो लिवर ट्रांसप्लांट कराना होता है। लेकिन जो लोग ऑर्गन डोनेशंस वाले जो लोग हैं वो ऑर्गन डोनेशन उनको देता है जो ये वादा करे कि उसके बाद शराब नहीं पिएगा। मेरा एक पेशेंट है, मेरे पास एक पेशेंट है, उसका 2011 में लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था अल्कोहल सिरोसिस में, अल्कोहल की प्रॉब्लम के अंदर, और उसके बाद से उसने हाथ नहीं लगाया और ही इज अलाइव। ही इज अलाइव, ही इज 67 इयर्स ओल्ड नाउ।
0: अच्छा,
1: वो अलाइव है
0: माशाल्लाह।
1: और उसके मुकाबले में, हाँ, और उसके कंपैरिजन में एक है जो सिर्फ 35 का है।
0: अच्छा,
1: अल्कोहल से मर रहा है अभी भी मेरे, हाँ, अभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वो मर रहा है, लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये इसको हाथ नहीं लगाना हमने,
0: फिर जाके पी लेता है।
1: लेकिन वो जब, हाँ, वो जब भी आता है हम उसकी उतनी ही लगन के साथ उसकी सेवा करते हैं, उसको बचाते हैं और फिर उसके बाद वो फिर पी लेता है। तो लेकिन मेरी होप अभी भी हाई है, मेरी होप अभी भी हाई है।
0: डॉक्टर की होप हाई हो, सॉरी आपकी बात के ऊपर बात कर दी, कथा कलामी माफ। डॉक्टर की होप हाई होनी चाहिए, फिर उसके बाद मरीज की होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब भी बीमार होता है वो कहता है डॉक्टर नसीम को बुलाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। उसको पता है मैंने इसको डांटना नहीं है, मैंने इसे कुछ भी नहीं कहना, बिल्कुल कोई बात नहीं, अब जब तुम जाओगे ना घर पे तो अब नहीं पीना, मेरा बस यही कि उसे दरखास्त होती है। तो उसने मुझे जुमे को भी यही कहा था आप नहीं पीऊंगा, लेकिन ठीक है मैं तुम पे बिलीव करती हूँ। तो आई मीन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके वाहिद सहारा हम लोग होते हैं, माँ बाप उनको छोड़ देते हैं, बहन भाई भी छोड़ जाते हैं और बीवी बच्चे भी छोड़ जाते हैं, तो फिर वो, मैं कहूँ कि ऑल इन ऑल हम होते हैं, हमारी टीम होती है उनके साथ ना, तो हम लोग वो पूरी कोशिश करते हैं। मैं जब पेशेंट मेरे पास आता है मैं उसको कहती हूँ देखो मेरे पास दो एम है, एक तो ये है कि तुम जेल ना जाओ, ठीक है, क्योंकि आप ड्रग्स इतनी महंगी है कि वो उसके लिए चोरी करेंगे, उसके लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है ना।
0: सही।
1: तो एक तो तुम जेल नहीं जाओगे, मुझसे वादा करो, और दूसरा ये वादा करो कि तुम ओवरडोज नहीं करोगे। ओवरडोज का बहुत प्रॉब्लम है ना ही, चाहे वो अल्कोहल का पीना हो या वो हेरोइन लेते हो या वो डायजेपैम लेते हो या कुछ भी कर लेते हो, कोकेन से इवन पेशेंट मर जाते हैं, क्योंकि कोकेन आपके ब्लड प्रेशर को इतना हाई करती है कि वो आप ब्लास्ट हो जाता है, वहां पे खत्म हो जाता है। आइस से भी यही होता है,
0: ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट फेल हो जाते हैं। तो ये, और अच्छा फिर उसके बाद क्या होता है मैं बताऊं, मैंने क्यों कहा कि हम हर शख्स ट्रीटेबल है, क्योंकि प्रिवेंशन, हम लोग प्रिवेंशन, दो चीजें याद रखो, एक तो पेशेंट होता है जो हकीकतन छोड़ना चाहता है ना,
0: सही,
1: और एक पेशेंट होता है जो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता,
0: उसको जबरदस्ती ले जाते हैं।
1: नहीं नहीं, जबरदस्ती हम नहीं लेके जाते, वो छोड़ना नहीं चाहता लेकिन एक वादा करता है कि वो कम मिकदार में पिएगा, कम मिकदार में ड्रग्स लेगा, ठीक है।
0: अच्छा, लेगा जरूर,
1: हम करते हो, हाँ लेगा जरूर। तो हम उसका, उसकी उसकी ख्वाहिश का हम ऑनर करते हैं, और हम एक हार्म रिडक्शन का प्रोग्राम होता है हमारे पास, हर जगह पे होता है, पूरे वर्ल्ड में होता है, जिसमें आप उनको क्लीन नीडल प्रोवाइड करते हैं।
0: अच्छा,
1: सिरिंजेस होती है उसमें, क्लीन नीडल होती है, और यहाँ पर तो जो है ना, जैसे ब्रॉथल्स होते हैं ना जिस जगह पर, तो वहां पे तो ये खुलेआम चलता है ना, तो वहां पे डिस्पेंसरी टाइप का ना एक बनाया होता है वहां पर, कि सेफ ड्रग्स यूज करने का वो इलाका होता है, वहां पे नर्सें होती हैं। अगर खुदा ना करे किसी ने हेरोइन लगाई है और ज्यादा लगा ली है तो बेहोश हो गया, तो वो नर्सें फिर रिससिटेट करती हैं, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं उनको।
0: अच्छा, एक सहूलत के लिए जगह होती है कि ये जगह पे आप जाएं और आप कर लें, हेलो भाई खुले दिल यहाँ पे बैठ जाओ, जहाज बन जाओ, ऐश करो।
1: बिल्कुल सेफ इंजेक्शन एरियाज होते हैं वहां पर लगाए जाते हैं। जहाँ पे कॉन्सर्ट होते हैं वहां पर भी होते हैं, वहां पे तो अव्वल तो पहले तो ये कि पहले होते थे अब नहीं, लेकिन फिर भी वहां पे एक टीम होती है नर्सिंग की जो कि जैसे एक्टेसी है, एलएसडी है, ये बहुत पॉपुलर ड्रग्स हैं जब जो लोग कॉन्सर्ट्स में जाते हैं बच्चे वो करते हैं।
0: अच्छा,
1: अगर वो बच्चे बीमार हो जाएं, गिर जाएं, तो उनको फिर वो लेके आते हैं बाहर, उनको रेसुसिटेट करते हैं, उनको हाइड्रेट करते हैं, उनको हॉस्पिटल में दाखिल करते हैं। तो ये प्रोग्राम्स पूरा एक है। अच्छा, फिर सेफ सेक्स की बहुत जरूरत होती है क्योंकि जब ये इंजेक्शन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ना नीडल्स, तो उसमें हेप सी, HIV, STD इस टाइप का बहुत खतरा होता है। तो इसलिए उनको सेफ नीडल प्रोवाइड की जाती है, यानी कि पूरा पैकेट होता है उनको दिया जाता है। जैसे हमारे क्लिनिक के बिल्कुल बाहर एक पूरा एक वेंडिंग मशीन होती है ना, जैसे वेंडिंग मशीन में सब कुछ होता है।
0: एक सेकेंड,
1: वो फ्री है, वो फ्री है।
0: अच्छा डॉक्टर निकट, मुझे एक सेकेंड एक अनाउंसमेंट करनी है। वो है कि समय अजान का वक्त हुआ जाता है ब्रेडफोर्ड में और उसके मसावात मुजफात में अजान, जोहर की अजान का वक्त है। अभी यहाँ पे मैं अजान नहीं आई है रिकॉर्ड में, तो आप अपने मुकामी वक्त के मुताबिक नमाज जोहर अदा कर सकते हैं। बस मैंने ये अनाउंसमेंट करनी थी। जी डॉक्टर निगर नसीम, हमारे पास 4 मिनट्स हैं और उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे और आप अपनी बात का सिलसिला जारी रखिए।
1: हाँ जी, तो मैं कहती हूँ कि जो लोग नहीं छोड़ना चाहते ना, तो फिर हमने उनके लिए हार्म रिडक्शन का एरिया बनाया हुआ है जिसमें ये सब कुछ होता है। ठीक है, तो हम चाहते ये है कि वो मरीज बच जाए, जिंदा रहे, फिर हम उनका इलाज करें। अगर वो नहीं रहेंगे, इससे हमारी बहुत ज्यादा डेथ रेट्स कम हुए हैं, पता?
0: अच्छा।
1: सुसाइडल जो एक्सीडेंटल ओवरडोज का रेट बहुत कम हुआ है इससे, और बहुत ज्यादा इंसानी जानों का को बचाया गया है इस सारे प्रोग्राम के तहत। अच्छा, अब जो लोग चाहते हैं कि हम इसे छोड़ दें, तो हम उनको डिटॉक्स ऑफर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम उनका कंटिन्यूसली मेडिसिन भी देते हैं, हम उनको फिर उनको रिहैबिलिटेशन दिया जाता है। और फिर हम उसको प्रिवेंशन भी सिखाते हैं। प्रिवेंशन 3 स्टेजेस पे हम सिखा सकते हैं। पहले तो ये कि जब हमें ये शुबा हो जाए कि हमारा बच्चा या कोई भी लड़का लड़की कोई भी ड्रग्स ले रहा है, तो हम उनको कैसे बचाएं।
0: अच्छा।
1: उनके साथ बात करें, कम्युनिकेशन करें, उनको हम GP के पास ले जा सकते हैं, उनको हम पैम्फलेट्स दे सकते हैं कि इनको पढ़ो, तुम ये करो वो करो, कम्युनिकेशन की बात सारी हम वहां बचा सकते हैं अपने बच्चे को। फिर अगर फर्स्ट तो वो ड्रग्स लेने लग ही गया है, फिर भी हम अपने GP के पास जाकर पता कर सकते हैं कि हम कौन से डिटॉक्स सेंटर पे जाएं या कौन सी टीम से हम इसका इलाज करवाएं, तो उनके पास पूरा एक प्रोग्राम होता है।
0: अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन हम GP से ले सकते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर को ये इशू है तो हमें कहाँ जाना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन हम अपने तमाम लिसनर्स हम ये जहन में बिठा लें। मुझे भी ये पता नहीं था, जिनको नहीं पता था कि ये इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ ऐसा है तो हम परेशान होते रहे कि हुन किथे जाइए, हुन की करिए, तो बेहतर ये है कि आप फौरन GP से इन्फॉर्मेशन लें और उससे कहें कि हमें या तो आप साइन पोस्ट कर दें या आप रेफर कर दें, है ना? ऐसे ही है?
1: बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा आप वैसे भी आप गूगल पर जाइए, वहां उनसे बात करें। हमारे हर जगह पर इनटेक लाइंस होती हैं, हॉट लाइंस होती हैं, इनटेक लाइंस होती हैं, और गूगल पे सारा का सारा आपके सामने आ जाता है कि आप डिटॉक्स सेंटर में बात करें। जैसे हमारे पास इनटेक लाइन है 24 घंटे वो ऑन होती है, वो हम उनसे बात कर सकते हैं। आप उनसे बात करें, वो एलोकेटेड एरिया के हिसाब से आपको बुक कर देंगे या बता देंगे कि आप कहाँ जाए और किससे मिलें जाके। ठीक है ना? तो ये बहुत आसान है। और लंदन जो है, ये तुम्हारा जो UK है, ये तो बहुत एडवांस है इसमें।
0: अच्छा।
1: बहुत एडवांस है यहाँ पे तो। हाँ, वो इस लिहाज से कि इनके डिटॉक्स सेंटर्स जो है वो 2 तरह के हैं, एक तो हॉस्पिटल बेस्ड है, एक इनके प्राइवेट है, फिर इसके बाद इनके होम बेस्ड भी है। कितनी प्यारी बात है।
0: अच्छा, होम बेस्ड भी है।
1: हाँ, होम बेस्ड भी है कि उनकी टीम आपके घर आएगी और वहां आपका इलाज करेगी, लेकिन असेसमेंट वो करने के बाद बताएंगे कि क्या होता है कि असेसमेंट में हमें पता लगता है कि अगर हम इसको घर पे रखेंगे तो हो सकता है कि इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए, है ना?
0: अच्छा।
1: अगर सीवियर डिपेंडेंस है ना, तो फिर तो उसको इनपेशेंट होना पड़ेगा ना, डॉक्टर्स के अंदर जाना पड़ेगा। I mean, सुपरविजन के लिए 24 घंटे वो रहना पड़ेगा। तो अगर तो कुछ माइल्ड वाला है तो उसको घर पे कर लेंगे, ठीक है ना? तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डिटॉक्स के बाद आपको रिहैब भी जाना चाहिए। रिहैबिलिटेशन में क्या होता है कि वहां पर प्रोग्राम्स होते हैं, 1 साल का, 3 महीने का, चार महीने का, छह महीने का, जो भी आपको सूट करता है। ठीक। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं वो पढ़ना चाहते हैं, वो फैमिली वाले होते हैं, तो वो कहते हैं हमें सिर्फ डे टाइम का चाहिए, रात को हम घर आना चाहते हैं। तो डे टाइम के भी रिहैब्स होते हैं। तो आप बहुत फैसिलिटीज हैं। और जैसे मैं प्रिवेंशन बता रही थी कि प्रिवेंशन में फिर आखिर में ये आ जाएगा, रिलैप्स प्रिवेंशन करते हैं हम लोग। तो ये इतनी सारी सहूलत होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपके पास काउंसलिंग होती है, साइकोलॉजिकल सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर साइकोथेरेपी होती है, आपको गैम्बलिंग छोड़ने की थेरेपी होती है, उसकी दवाइयां होती हैं, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। इसलिए आपको दिल छोड़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नहीं हो सकता
0: डॉक्टर नगेंद्र सिंह। अब हम करेंगे टाइम चेक और हम जाएंगे टाइम चेक के बाद कमर्शियल ब्रेक की तरफ और फिर हमारा फ्लैशबैक गीत होगा, लेकिन हम उसके बाद वापस आके थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि और कौन कौन सी टाइप की एडिक्शंस हैं जो कॉमन है नशे के अलावा, इंशाल्लाह। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि पहले कर लेते हैं सामान टाइम चेक और टाइम चेक के बाद बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी सामीन, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ियों पे हुआ चाहते हैं 1:45, यानी कि 45 minutes past 1। बढ़ते हैं हम कमर्शियल ब्रेक की जानिब। कमर्शियल ब्रेक के बाद होगा फ्लैशबैक गीत, फ्लैशबैक गीत के बाद दोबारा हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे डॉक्टर निगत नसीम के साथ। हमारे साथ रहिएगा।
8: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu packed with even

0: जी हाँ, वेलकम बैक सामेईन। हमारे साथ डॉक्टर निकत नसीम मौजूद हैं और मैंने सोचा आपको क्यों ना छेड़ा जाए गीत लगा के। पहला नशा पहला खुमार। हमारी कुछ कॉल्स मिस हो गई हमसे, प्लीज़ अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप ऑन एयर बात करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे तमाम लिसनर्स जो हैं वो बहुत गौर से इंफॉर्मेशन सुन रहे होंगे। जो कॉल्स मौसूल हुई हैं, ख़ासतौर पर चौधरी रुखसार साहब, आपने बताया है कि आपको बातें डॉक्टर निकत नसीम की बहुत मालूमाती लग रही हैं और आपको बहुत पसंद आ रही हैं ये बातें। और उन्होंने कहा कि ये ज़रूर बताएं कि ये लोग नशा करके गाड़ियां क्यों चलाते हैं। ना चलाओ भाई, एक्सीडेंट करते हो तो दूसरों का भी नुकसान करते हो, अपना भी करते हो। तो ओवर टू डॉक्टर निकत नसीम, ये थोड़ा सा टाइम है और हम इस पर बात करेंगे कि कौन कौन से एडिक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन हैं।
1: बाथरूम में कॉमन एडिक्शन तो मैंने बताया ना कि कैनबिस सबसे कॉमन है। कैनबिस
0: मेरा कहने का मतलब है कि नशे के अलावा जैसे फोन और पता नहीं क्या क्या।
1: अच्छा, अनयूजुअल, यू टॉकिंग अबाउट द अनयूजुअल एडिक्शंस। अनयूजुअल एडिक्शन में यूजुअली वो एडिक्शन के क्राइटेरिया को कभी कभी मीट करती कभी नहीं करती, इसलिए हम उसको कहते हैं एडिक्टिव कंपल्सिव बिहेवियर।
0: अच्छा,
1: तो उसमें खासतौर पर जैसे टैटू आ जाते हैं, गेमिंग, गैम्बलिंग। गैम्बलिंग तो कभी कभी बिल्कुल सीवियर डिसऑर्डर बन जाता है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास एक पेशेंट थी जिसको फ्यूनरल में जाने का बहुत शौक था। सबसे पहले देखती थी
0: जनाजे में जाने का, ये भी एडिक्शन है।
1: हाँ, जनाजे में जाने का उसको एडिक्शन था। एडिक्शन नहीं कह सकते यार, कंपल्सिव बिहेवियर कह सकते हैं उसका।
0: अच्छा,
1: तो वो उसको जाना है। फिर उसके बाद सांपों के जहर की एडिक्शन भी आजकल कॉमन हो रही है।
0: सांपों के जहर की सोच के डर लग रहा है।
1: हाँ, उसका जो जहर होता है ना उसके अंदर एक एडिक्टिव। अच्छा, सांपों के जहर को आप मामूली मत समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है इंसानों के लिए। सांपों के जहर से वैक्सीन बनती है, सांपों के जहर से एंटी हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर की दवाइयां बनती हैं, आपकी कोडीन, आपकी जो घोटों के दर्द की दवाई है ना,
0: सांपों के जहर से बनती है।
1: जोड़ों के दर्द की दवाई वो उसमें सांप के जहर से लिया जाता है कुछ। तो इसी तरह से सांप का जो जहर है उसमें एक नशा है, उसमें एक केमिकल है जो नशा करते हैं, नशा प्रोड्यूस करता है। पुराने वक्त में इसके ऊपर ना रिसर्च कर रही थी सांप के जहर के ऊपर, बहुत पुरानी बात है। मैंने अपना जो है ना इसके ऊपर वो भी किया था, प्रेजेंट किया था केस मैंने। तो पुराने जमाने में, बहुत कदीम जमाने में, ये जो एडिक्शन है ये कोई इतनी नई चीज नहीं है, ये हजारों साल पुरानी है।
0: मुझे याद आया
1: बच्चों को,
0: हाँ मुझे याद आया, क्लियोपेट्रा के बारे में मैंने पढ़ा था। क्लियोपेट्रा की जिंदगी भी मैंने किताब पढ़ी थी और क्लियोपेट्रा भी अपने आप को सांप डिसा के नशे करती थी। हाँ
1: बिल्कुल, आपका नशा। अच्छा, उसमें क्या होता था कि जो गरीब लोग थे ना गांव वगैरह के, वो अपने बच्चों के सपेरों के पास लेके जाते थे और कहते थे कि मेरे बच्चे को एक छोटा सा सांप से डंक दिलवा दो, ताकि वो, क्योंकि वो गांव में रहते थे ना, वहां पे सांप बिच्छू और बहुत सारी जहरीले कीड़े मकौड़े आते रहते थे, तो वो एक ऐसे वैक्सीनेशन के तौर पर करते थे। कुछ बिलीव था।
0: ओह माय गॉड, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं ऐसे सुन के।
1: बिल्कुल। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, स्पेशली जो लास्ट मैंने पढ़ा था वो इंडिया में पढ़ा था, कि सांप के जहर की जो एडिक्शन का जो केमिकल है उसके अंदर, उसके कैप्सूल बनाए हैं उन्होंने।
0: अच्छा।
1: और वो बड़ी एडवांस जो एलीट पार्टियां होती है ना, जो बड़ी बड़ी एडवांस पार्टियां होती हैं, जो महंगा बहुत है ना।
0: अच्छा।
1: बहुत महंगा, लाखों में, एक लाखों रुपए का एक कैप्सूल है। तो वो लोग यूज करते हैं उसमें। हाँ, और वो हाई करता है आपका नशा, आपको आपको आप समझते हैं कि आप किंग है, आप दुनिया में उनको बदल सकते हैं। तो इस तरह कॉन्फिडेंस आपको देता है। तो ये एक बहुत अजीब सी बात है। और इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोग नशे के तौर पे, यानी कि एक किस्म का कंपल्सिव टाइप का जो बिहेवियर होता है वो उसमें आती है, इस तरह की चीजें।
0: तो
1: ये सब देखते रहते हैं,
0: ये नशे हैं। तो डॉक्टर, ऐसा है कि हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, अब प्रोग्राम को क्लोज करने की तरफ। तो आपने वादा किया था कि आप नेक्स्ट प्रोग्राम में भी आएंगे, वादा कायम है?
1: इंशाल्लाह
0: कायम है। तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में भी फिर हम एडिक्शन के बारे में ही बात करेंगे इंशाल्लाह।
1: सुनो, ये डिपेंड करेगा आपके सुनने वालों पे कि वो क्या सुनना चाहते हैं,
0: ठीक है।
1: लेकिन मैं एज ए कंक्लूजन फॉर एडिक्शन मैं जो बात करना चाहती हूँ आप सबके इस रेडियो के तबसर से पहुंचाना चाहती हूँ ये कि नशे में मुबतला इंसान को हम लोगों ने कभी गुनाहगार समझते हैं, कभी समझते हैं कि उसका किरदार कमजोर है, कभी समझते हैं कि ये मुजरिम है। हमने अभी मुजरिम पे बात नहीं की कि जुर्म कौन कौन से करते हैं,

0: हवाओं के दोष पर एक पैगाम भेजा है, हवाओं के दोष पर एक पैगाम भेजा है, तसव्वुर के हाथों एक पयाम भेजा है, लम्हा फुर्सत हो तो कबूल फरमाइएगा, इस नाचीज ने प्यार से सलाम भेजा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब अर्ज करती हूँ, एंड ऑफ कोर्स अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। सामीन आप समाप्त फरमा रहे हैं सनराइज रेडियो की नशरियात ऑन 103.2 एफएम पर, एंड सनराइज के आल्सो कैन बी हर्ड ऑन 100.6 एफएम एंड 103.2 एफएम अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर। डीएबी प्लस में ब्रैडफोर्ड, केटली, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन, मिल्टन कीन्स एंड वेस्ट लंदन में भी आप डीएबी के जरिए सुन सकते हैं। एप्पल स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर में आप ऐप डाउनलोड करके आप सुन सकते हैं, एंड ऑनलाइन आपको पता ही है कि www.sunriseradio.fm पर आप हमें सुनते हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारे स्टूडियो का नंबर डायल करके बराह रास्त आप हमसे गुफ्तगू भी करते हैं। नंबर तो आपको पता ही है ना, 01274306666। तो जनाब, दिन आज सैटरडे का यानी हफ्ते का छुट्टी का फरसम और हमारी मुलाकात का भी। डेट है आज 12th of September 2026 और मैं हूँ एक बार फिर, आई नो आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, मैं आप सबकी खिदमत में आज हाजिर हूँ, आप ही की अपनी मेज़बान हुमैरा। मेरा आपके साथ रहेगा ठीक 5 बजे तक, और मुझे हमेशा की तरह न सिर्फ उम्मीद बल्कि यकीन है कि आप मेरा साथ ज़रूर निभाएंगे ना सामीन। शुक्रिया अदा करना है हमें नाहिद का, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया हमेशा की तरह, और मैं ख़ुद उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मैं भी उनसे यही कह रही थी कि हमारी कम्युनिटी में ऐसे प्रोग्राम्स की बहुत ज़रूरत है जहाँ पर हम अवेयरनेस को फैलाएं, जहाँ पर लोग बहुत इन्फॉर्म्ड चॉइसेस उनके पास हों, और जहाँ पर लोग बहुत मुस्तफ़ीद हों इन चीज़ों से कि क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या चीज़ें उनके लिए अच्छी हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। सो वेल डन नाइट फॉर सच अ मार्वलस, ट्रेमेंडस एंड एब्सोल्युटली ट्रेमेंडसली ब्यूटीफुल प्रोग्राम आपने प्रेजेंट किया। और नाहिद ना सिर्फ एक अच्छी प्रेजेंटर हैं बल्कि एक बहुत अच्छी इंसान है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, एंड आई लव यू लोड्स नाहिद। जहाँ भी आप जा रही हैं, घर या कहीं भी, तो खैरियत से जाइए, और इंशाल्लाह आपसे फ़ोन पर तो बात तो होती रहती है, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगेबान। जी जनाब, तोहफे बारी हमारी, और मैं उम्मीद करती हूँ सामीन कि आप जहाँ कहीं भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जी हाँ, खुश रहिए, मुस्कुराइए, इंडीड ज़िंदगी खूबसूरत है, सच में है। मैं हूँ ना, मैं आपको, मुझे तो गाना याद आ गया, मैं हूँ ना, किसका है ये तुमको इंतज़ार, मैं हूँ ना, लेकिन वो अपनी जगह जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, लेकिन हकीकतन मैं यहाँ पर हूँ, और मैं आपको ये बावर करवाना चाहती हूँ, मैं आपको यकीन करवाना चाहती हूँ कि डिस्पाइट हैविंग ऑड ब्लू डेज और डिस्पाइट हैविंग डिफ़िकल्टीज इन ऑल दैट, ज़िंदगी वाकई में बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा इनाम, बहुत अच्छा तोहफ़ा हमें मिला है। तो आइए उसी ज़िंदगी से कुछ लम्हे कशीद करते हैं और एक साथ मिलकर बिताते हैं। अगर आप तैयार हैं तो हो जाए, चले, फैसन योर सीट बेल्ट, सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस म्यूजिकल मैजिकल जर्नी दैट आई एम अबाउट टू टेक यू ऑन। वेरी नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स, सराफिक पोएट्री, अमेलगमेशंस ऑफ मेनी न्यू इमोशंस पुट टुगेदर, दैट्स आई एम टॉकिंग अबाउट सॉन्ग्स, जिसमें अब सॉन्ग्स तो देखिए ऐसा नहीं है कि मैं कोई इतने ब्रेक के बाद आई मैं कोई न्यू सॉन्ग्स ले आई, सॉन्ग्स तो वही लगेंगे, लेकिन हर दफ़ा इमोशंस डिफरेंट होते हैं, तो हम उस इमोशंस की बात करेंगे भी और उसी इमोशंस को हम साथ लेके चलेंगे, बिकॉज लेट्स फेस इट, जो एहसास है, जो इमोशंस हैं, वही मेन कैरेक्टर है हमारी ज़िंदगी का, वही है। हम अगर कोई चीज़ फील करते हैं डीपली, तो ही इंसान होने का एक सबूत है हमारे पास, क्योंकि इंसान ही है जो, एक पत्थर होता है उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक इंसान ही होता है जो हर इमोशंस को फील करके ज़िंदगी के नशीब व फराज को साथ लेके वो चलता रहता है, उम्मीदों की, यादों की पगडंडी पर। कभी वो फिसलता भी है, कभी वो उसको छोटी सी चोट भी लग जाती है, कभी वो बड़े आराम स्मूथ सेलिंग के साथ उस पगडंडियों पर बड़े आराम से नीचे आ जाता है, ढलान भी होती है, लेकिन दैट्स व्हाट लाइफ इज, राइट? एंड दैट्स व्हाट अ ह्यूमन बीइंग, अ पर्सन, इंसान की एक मेन चीज़ है जिंदगी में. यू अग्री विद मी, राइट? वेल, वुमन इज ऑलवेज राइट, मर्दों के पास चॉइस नहीं होती ना, उनको अग्री करना ही पड़ता है, तो बस आपको भी अग्री करना पड़ेगा. बहरहाल, बातें तो आपको पता है कि आई कैन टॉक फॉर इंग्लैंड, लेकिन ब्रेक जो है वो मुझे घूर घूर के देख रही है और कह रही है कि इसीलिए मैं आके तुम्हें याद दहानी कराती हूँ कि खुदा रा चुप हो जाया करो थोड़ी देर. तो चले, अब क्या है ना, इतने अरसे के बाद मिली हूँ ना, तो कोटा पूरा कर रही हूँ हर वीक का थोड़ा थोड़ा करके. एनीवेज, तो इससे पहले कि हम ब्रेक की जानिब चलें, और ब्रेक के बाद मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनाऊँ, जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल सॉन्ग. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे एटलीस्ट वेलकम ज़रूर कहेंगे. तो अगर कोई गीत पसंद आ जाए, मेरी पसंद का गीत है, लेकिन इमोशंस आपके होंगे, सेंटिमेंट्स बिहाइंड आपके होंगे, किसी लव्ड वंस, नियर वंस, डियर वंस के नाम गीत लगाना चाहें, तो हेलो हाई करना चाहें, मुझे वेलकम करना चाहें, जो कुछ भी, तो नंबर आपको पता ही है 01274306666. बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक, लेट मी टेल यू, आई मिस्ड यू ऑल, यू आर ऑल माई, यू माई फैमिली, आई ऑलवेज कंसिडर यू सनराइज फैमिली, एंड यू आर क्लोज टू माई हार्ट. तो आई डिड मिस यू अलॉट, इवन दो आई हैड सच अ बिजी पीरियड, आई हैड सच अ बिजी टाइम, डिस्पाइट ऑल दैट आई मिस्ड यू ऑल. तो चले चलते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की जाने, ब्रेक के उस पर आप सुनेंगे इस गीत को, और फिर इसी तरह के मजीद गीत हम सुनते रहेंगे.
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ.
0: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है. शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था.
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
0: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014. सोफी ज्वेलर्स.
2: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है. शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश, मैथ्स, ईसॉल कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं. बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं. मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं.

0: हाँ सामीन, प्यार तो होना ही था भाई। देखिए, प्यार वाकई होना ही था आपके और हमारे दरमियान, मगर ये प्यार है ना, वो बहुत डिफरेंट प्यार है। ये इज्जत वाला प्यार है कि नहीं? जहाँ इज्जत होती है ना, वहाँ प्यार ना हो ये नामुमकिन सी बात है। प्यार और इज्जत जो है ना, वो साथ साथ चलते हैं, हैंड इन हैंड चलते हैं। तो हमारा जो एक प्यार है सनराइज़ रेडियो के साथ आपका और हमारा, तो उसकी मिसाल नहीं मिलती। क्या ख्याल है? चाहे हम जितना भी गैर हाजिर रहे हैं, जितने टाइम के बाद भी आए, जैसे ही हम यहाँ आते हैं, उस तरह से प्यार मिलता है कि लगता है कहीं गए नहीं थे हम, है कि नहीं? तो बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कुछ पयाम सलाम है वो आपकी गोश गुजार कर लें, तो हमें चलना होगा कमर्शियल ब्रेक की जानिब। ब्रेक के उस पार आप सुनेंगे खूबसूरत सा गीत और होती है फिर से आपके और हमारी मुलाकात। तो जनाब प्रेजेंटर्स, कि ये जो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि सनराइज रेडियो लिसनर चॉइस अवार्ड्स 2026 आर कमिंग सून, सेलिब्रेटिंग द बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, वेन्यूज एंड आर्टिस्ट यू लव। वोटिंग विल बी एक्सक्लूसिव टू लिसनर क्लब मेंबर्स, सो जॉइन फ्री नाउ एट सनराइज रेडियो, sunrise.radio, एंड कीप लिसनिंग फॉर मोर डिटेल्स। एक मरतबा फिर बता दूं कि वोटिंग विल बी एक्सक्लूसिव टू लिसनर क्लब मेंबर्स, सो जॉइन फ्री नाउ एट sunrise.radio एंड कीप लिसनिंग फॉर मोर डिटेल्स। मैं अभी आज ही आई हूँ और मैंने ये देखा है कि ये पढ़ना है, बट आई डोंट नो इफ इट्स अबाउट other than businesses and organizations and venues and artists, if it's about presenters as well of voting, I don't know. Then abhi aapki loyalty ka pata chalta hai na ki voting mein kya aata hai, hai ki nahi. To chale, announcement bhi ho gayi hai. To hame call ki thi Mujahid aapne, bahut bahut shukriya aapki call ka, bahut hasaya aapne, and sometimes that's exactly what you need. आपको पता है कि लाफ्टर जो है, हंसी जो है, वो एक ऐसी मेडिसिन है जो फ्री होती है और बड़ी कारामद होती है। अब जाके ऐसे हालात हुए हैं कि अब जो डॉक्टर्स हैं जापान और बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज़ में, वो एक्चुअली प्रिस्क्राइब करते हैं इंस्टेड ऑफ मेडिसिन, वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको हॉलीडे पे जाना चाहिए। एटलीस्ट इफ़ यू कांट अफोर्ड टू गो ऑन हॉलीडे, देन एटलीस्ट गो टू पार्क, नेचर में आप वॉक कीजिए, वो आपको ज़्यादा हील करेगा देन घर के अंदर बैठ के आप कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ टैबलेट्स ले रहे हैं। ऑफकोर्स मेडिसिन की एक अपनी अहमियत है, वो अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है तो यू मस्ट टेक इट, लेकिन उसके साथ साथ खुश रहना, जिंदा दिल रहना, हंसना, ये एक बहुत ही कारामद मेडिसिन, थेरेपी कह लें या मेडिसिन कह लें, तो होती है। और आपने जो बहुत हंसाया, लाइक आई सेड, समटाइम्स दैट्स एग्जैक्टली व्हाई यू कम हियर, कि आप तीन घंटे हंस बोल लेंगे बिफोर यू गो बैक टू योर ओन मंडेन लाइफ जो होती है। लेकिन बहरहाल मुजाहिद, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, नेक ख्वाहिशा, जब हमेशा मुझे दुआओं से नवाजते हैं, अच्छे अल्फाजों में आपने हमेशा मुझे मुझसे बात की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने तमाम सुनने वालों को सलाम भी कहा है, वालेकुम अस्सलाम, और आपने कहा कोई अच्छा सा गीत दोस्तों के नाम कर दीजिएगा। तो अब तो ब्रेक का ही टाइम आ गया है, ब्रेक के बाद जो गीत होगा वो जाएगा आपकी तरफ से आपके दोस्तों के नाम। खुश रहिए, सलामत रहिए। इसके अलावा हमें कॉल की थी तारिक बिरजी आपने ड्यूसबरी से, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी। हमेशा की तरह आपने बहुत इज्जत, बहुत एहतराम, बहुत प्यार दिया, बहुत खुलूस से आपने बात की, तो जो कि आपकी एक शख्सियत का खासा भी है, क्योंकि आई कैन नेवर इमेजिन तारिक बिरजी टॉकिंग टू एनीबडी एंड टॉकिंग अदर देन अटर रिस्पेक्ट, आई कैन नॉट इमेजिन दैट, क्योंकि उनकी एक शख्सियत का खासा है कि वो एक बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है, वो बहुत हम्बल होके बात करते हैं, चाहे वो उनके आगे छोटा हो या बड़ा हो, दैट समथिंग आई हैव नोटिस्ड ओवर द ईयर्स। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम, उन्होंने कहा कि अब मैं सुनूंगा आराम से बैठ के, तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ निभाने का भी। खुश रहिए, बहुत सारी आपके लिए दुआएं, खुश रहिए, सलामत रहिए। सामीन, अगर आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वाई नॉट 01274306666 हमारा नंबर है, और मैं हूँ हुमैरा आपकी मेज़बान। तो अब हमें चलना होगा छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की जानिब। ब्रेक के उस पार आप सुनेंगे मेरा पसंदीदा गीत। यस आई नो आई एम बिट सेल्फिश इन दिस kind of thing. I like to play the songs that I my absolute favorite I love. क्योंकि अब जाके इतना अरसे के बाद इतना तो मुझे पता है कि मेरी पसंद आपकी पसंद और आपकी पसंद मेरी पसंद. तो जो सॉन्ग मैंने चूज़ किया है वो है अलका याग्निक की आवाज़ में दिलबर दिलबर, काइंड ऑफ अपबीट सॉन्ग. उसके साथ हम सब भी थोड़ा सा यू नो गुनगुनाएंगे और थोड़े से अपनी परेशानियों को भूल जाएंगे और थोड़े से हम मगन हो जाएंगे उस म्यूज़िक में और उस लम्हे में. क्या ख्याल है आपका? तो आइए चलते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब. बट डोंट यू गो एनीवेयर, डोंट टच दैट डायल एंड आई विल बी राइट बैक.
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

जी हाँ सामीन, दिलबर दिलबर, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इट वाज। व्हाट्स नॉट टू लाइक, हाँ आई एम श्योर यू ऑल लव्ड इट। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभार कोई सॉन्ग, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, रेपिटेशन वाली बात तो हो ही जाएगी, लेकिन बनता है बोलना। तो क्या है ना कि कभी कभार कोई सॉन्ग हमारे हालात के इतने मुताबिक होता है, इतना परफेक्ट फिट होता है ना कि हमें वो सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभार कोई जवाब नहीं भी होता। कभी ऐसे ही कोई सॉन्ग बज रहा हो जो कि अपबीट हो, ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल म्यूजिक, ब्यूटीफुल वॉइस, देन यू जस्ट थिंक वाओ, एंड मैं यहाँ बैठ के पूरा सॉन्ग बड़ा मैंने इन्जॉय किया है। या आई मीन हर वक्त मगन रहना अच्छा लगता है ना, और आपको भी मैं यही कहती हूँ यहाँ कि एक मगन रहिए हर वक्त। सिर्फ सिर्फ खुश रहना इनफ नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे चेंजिंग आती जा रही है, टाइम आगे जाता जा रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें बढ़ती जाती हैं ज़िंदगी में, पर्सनली भी इंसान की ज़िंदगी में, और अगर हालात हाजरा का तज़िया किया जाए तो आप जानते ही हैं कि जिस तरह के हालात आजकल बाहर हो गए हैं, तो अपनी तो खैर है, ये सब कुछ सुन के दिल बहुत दुखता है, बहुत तड़पता है दिल। अब मैं उसको आज ही आई हूँ और मैं आपको उस तरफ नहीं लेके जाना चाह रही जहाँ हम बहुत सैड बातें करें या सैडनेस की तरफ जाएं, विच वी विल दो, क्योंकि उस तरफ भी जाना ज़रूरी है। सिर्फ ज़िंदगी इसी का नाम नहीं है कि से हम अच्छी अच्छी बातें करें, रोमांटिक सॉन्ग्स लगाएं और हंसी हंसी की बातें करें, वो भी ज़रूरी है, एक तनासुब अच्छा लगता है, बट नॉट टुडे। लेकिन सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं अचानक से, जैसे जैसे टाइम ज़्यादा ज़्यादा जाता जा रहा है, प्रॉब्लम्स, मुसीबतें, हर तरफ दुख तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा फील होती हैं। तो ऐसे में सिर्फ पॉजिटिव रहना अब जाके इनफ नहीं रहा, अब आपको एक मगन रहना है। यू नो मगन का मतलब पता है ना? वेल मुझे भी नहीं पता, लेकिन लेट्स डिग डीप, लेट्स फाइंड आउट, जो कि अभी हमें ब्रेक इजाज़त नहीं दे रही। बट मगन रहना एज इन आप कहेंगे हमें बता रही हो मेरा, एज इफ हमें नहीं पता मगन रहना। आई नो यू नो, लेकिन मैं अपने आप को बावर करवा रही हूँ। या तो मगन का मतलब यह है कि एक धुन में रहना, एक होती है ना धुन में क्रेजी होके रहना कि जैसे भी हालात साजगार, कामरान हैं हम, जैसे वो मुजाहिद जो होते हैं ना, जो सिपाही, वो कहते हैं ना कि हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे भी हालात साजगार हैं हम। तो उस तरह के कि जो भी हो रहा है ज़िंदगी में बस खुश रहना है, बस अच्छा रहना है, एक मगन रहना है कि हाँ मैं फिर भी खुश हूँ, तो वो बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये गीत ऐसे इसलिए लगाते हैं हम ताकि आप मगन हो जाएं थोड़ी देर के लिए। अब हुआ है कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हुए तो फ़ोन करके बताना तो बनता है, आपका क्या ख्याल है आपका, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। 01274306666 पर टाइम तो हो गया है ब्रेक का, हो ही गया है, लेकिन उससे पहले मेरा पसंदीदा गीत, माई एब्सोल्यूट फेवरेट सॉन्ग, आइए ना मिलके ये सुन लेते हैं, फिर चलते हैं ब्रेक की जाने। ब्रेक के उस पर आप सुनेंगे एक और खूबसूरत सा चुलबुला सा गीत अभिजीत की आवाज़ में, ऐसे ना मुझे तुम देखो, कुछ पयाम सलाम है वो भी आपकी खुशगुजार करने है। बट फर्स्ट सांवली सलोनी, सी महबूबा, तेरी चूड़ियाँ शरंग करके।

0: जी हाँ सामीन, इससे पहले कि हम ब्रेक की जानिब चले, हम कर लेते हैं सॉरी एक और ब्रेक की जानिब जाना है, लेकिन पहले कर लेते हैं टाइम चेक।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: ओके, सो द टाइम इज 2:47, दैट्स 2:47।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।

0: जी हाँ सामीन, आप सुन रहे थे एक चुलबुला सा खूबसूरत सा गीत अभिजीत की आवाज़ में। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूँगा तुमको, मैं चुरा लूँगा तुमसे, दिल में छुपा लूँगा। सच अ ब्यूटीफुल रोमांटिक नंबर, राइट? उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। गीत तो मैंने क्यों करके रख दिया था, एक और भी जो कि है अगेन माय एब्सोल्यूट फेवरेट, मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। लेकिन कुछ पयामो सलाम, और जिस तरह आपको पता है ना कि मेरा फेवरेट सेगमेंट, अगर आप मुझे पूछें कि पोइट्री भी होती है, स्टोरीज़ भी होती हैं, सॉन्ग्स भी होते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट सेगमेंट जो है वो पयामो सलाम होता है। बिकॉज आई गेट टू टॉक टू यू, आई गेट टू फाइंड आउट कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या हो रहा है। ऑल दिस एक क्यूरियोसिटी मुझे होती है कि मेरी जो फैमिली है सनराइज, मैं ये कर रही हूँ, वो लोग क्या कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक इट। तो हमारी बात हुई फरहा से। फरहा कनाडा में है, तो अभी मैंने स्क्रीन पे ऑन्टारियो का मैंने नंबर देखा, आई वाज लाइक ये कौन है। तो जैसे ही उनसे बात हुई, उन्होंने कहा, मैंने कहा नाम बताइएगा, तो कहती है यार मैं फरहा हूँ। तो क्योंकि उनसे अब तो माशाल्लाह, वो कनाडा से आई थी मिलने के लिए मुझसे, तो उनसे मुलाकात भी अब तो हो गई, लेकिन कभी कभी आवाज़ एकदम से इंसान वो नहीं पहचान पाता। लेकिन इट वॉज सो सो सो स्वीट ऑफ फरहा टू एक्चुअली फाइंड आउट द नंबर एंड देन कॉल मी, कि मैं और ज़ैना उनकी बेटी हैं, बहुत प्यारी हैं, तो वो भी सुन रही हैं। एंड थैंक यू सो मच फरहा, आई वॉज लवली टॉकिंग टू यू एंड टू नो दैट यू एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका कनाडा में इस वक्त स्टिल अर्ली मॉर्निंग है, तो टू नो दैट दे गॉट अप एंड दे ट्यून्ड इन एंड दे लिसनिंग मीन्स अ लॉट टू मी। तो उनकी बेटी ज़ैना है वो, तो मैं हमेशा फरहा से ये कहती हूँ, जब वो आई थी अभी, तो आपको पता है ना सामीन कि आई एम अ फूडी, आई लव टू ईट, मुझे खाना पीना ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। तो मैं और ज़ैना हम लोग खा रहे थे, फरहा कुछ नहीं खा रही थी, तो मैं बस वो अब छेड़ती हूँ मैं फरहा को कि आप तो फूडी पार्टनर नहीं है हमारी, मैं और ज़ैना वी लव टू ईट बट यू डोंट। तो बड़ा मज़ा आता है उनके साथ छेड़खानी करने में। बट सीरियसली फरहा, थैंक यू सो मच स्वीट, माई स्वीट सिस्टर, लवली मीटिंग you and lovely talking to you as well. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उन्होंने कहा कि आज के जितने भी गीत हैं वो हुमैरा आपके नाम हमारी तरफ से। Oh my God, that's so sweet. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Have a wonderful day ahead for her. And इसके बाद हमें कॉल की मनीजा बाजी। आपने बहुत बहुत बहुत शुक्रिया मनीजा बाजी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मनीजा बाजी से मुलाकात हुई थी कुछ मंथ्स पहले, तो उन्होंने मुझे उस वक्त भी कहा था कि मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से सुनती हूँ, और आई थैंक्ड हर। लेकिन काफ़ी अर्सा हो गया उसको, 4-5 महीने, मे बी मोर। तो आज उनसे जब बात उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा मैं किचन में हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तो मैंने कहा अच्छा ये तो बताएं ना कि किचन में है तो बन क्या रहा है। जब मैं यहाँ आती हूँ मुझे भूख बहुत लग जाती है, पता नहीं क्यों, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सब क्या क्या बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो घर में आज दावत है तो बाकी चीज़ें तो बाहर से आएंगी, लेकिन मैं जो हूँ वो स्वीट राइस बना रही हूँ और बैंगन का भरता खाली बना, उन्होंने कहा था। एंड दोनों ही चीज़ें मेरी इतनी फेवरेट है। क्या चीज़ मेरी फेवरेट क्या चीज़ मेरी फेवरेट नहीं है, ये बात होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल जो मतंजन होता है ना, जो कलर वाला जर्दा जो होता है, आए हाय हाय, उसमें बहुत सारे नट्स होते हैं, बहुत सारा उसमें कोकोनट होता है, हर चीज़ होता है, बड़े मज़े का होता है, एब्सोल्युटली लव लव लव दैट। और बैंगन का भरता, ओफ किसे नहीं पसंद। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपने पार्टी रखी है, आपने मुझे नहीं बुलाया। कहती है ओह नहीं नहीं तुम आ जाओ फौरन। सो बट दैट्स सो स्वीट ऑफ यू मनीषा बाजी। नेक्स्ट टाइम जब आप राइस बनाएं स्वीट राइस एंड बैंगन का भरता, तो मुझे ज़रूर भिजवाइएगा। तमाम सुनने वालों को आप सलाम कहती हैं, और उन्होंने कहा कोई अच्छा सा गीत ज़रूर लगाइएगा रफ़ी का। तो अब ये घंटा तो अपने अख्ताम को पहुँचा, अगले घंटे में मैं रफ़ी जी का कोई गीत आपके नाम मैं ज़रूर कर लूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, सलामत रहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अली खान, खोचा मरा तुम किधर था, तुम हमको फ़ोन किया, हमको बहुत अच्छा लगा। तो अली खान जो है वो काफ़ी अर्से के बाद उनसे बात हो रही है, लेकिन देन अगेन उन्होंने कहा कसूर आपका था, हमारा नहीं था। बात भी सही है, वो होता है ना, हम औरतें जितना भी हमारा कसूर हो हमने दूसरों पर ही कसूर रखना होता है। मैंने कहा हाँ, कहाँ गायब थे आप, किधर गायब, गायब तो आप थी। बात उनकी भी सही है, वैसे गायब तो मैं थी। तो अली खान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अली खान को भी लगे हाथों तो हमने पूछ ही लिया। मैंने कहा कि कुछ खाया पिया या वैसे ही, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नाश्ता किया था। मैंने कहा जल्दी बताएं क्या नाश्ता किया। उन्होंने कहा था हलवा पूरी खाई थी। तो मैंने कहा ओह माय गॉड, मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट ब्रेकफास्ट आपने किया। बट देन अगेन, मैंने भी लास्ट वीक हलवा पूरी खाई थी, फ्यू मंथ्स अगो, काफ़ी मंथ्स हो गए थे हलवा पूरी नहीं थी। तो लास्ट वीक और आई थिंक टू वीक्स अगो मुझे बहुत, मेरा दिल ललचा रहा था हलवा पूरी खाने को। एंड आई वेंट, एंड ऑफ कोर्स आई कैन नॉट मेंशन द शॉप्स नेम और एनीथिंग, बट इट वाज इन बाटली। एंड ओह माय गॉड, मैं क्या बताऊँ आपको, इट वाज एब्सोल्युटली डिलीशियस। मैंने ऐसी हलवा पूरी कहीं पर नहीं खाई थी, क्योंकि औरतें बना रही थी, इट वाज फैमिली ओन बिजनेस काइंड ऑफ थिंग था। तो मैंने भी खाई थी, तो इसलिए मेरा दिल बहुत नहीं ललचा, लेकिन आई वाज लाइक ओह माय गॉड हलवा पूरी, इससे बेहतर ब्रेकफास्ट हो ही नहीं सकता अदर देन पाई और निहारी ऑफ कोर्स इन ब्रेकफास्ट। बट अली खान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इज्जत, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत दुआओं से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जिसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, अब ऐसा है कि कुछ ही लम्हों में मिलती है ज़िंदगी में, सॉन्ग तो बढ़ गया मगर कोई बात नहीं, यू नो व्हाट, हमारे पास अनदर 2 आवर्स पड़े हुए हैं, तो फिकर नॉट, कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर ही लेंगे। तो इस वक्त हमें चलना है न्यूज़ ब्रेक की जाने, मुलाकात होती है आपसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। कहीं जाइएगा मत, मेरा साथ इसी तरह से निभाते रहिएगा। और अगर कॉल करना चाहते तो ज़रूर कॉल कीजिएगा 01274306666 पर। आइए चलते हैं न्यूज़ ब्रेक की जाने।
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
2: From the Sky News Centre at 3. Reform UK's two biggest donors have handed the party a record-breaking £36 million each. Thai-based businessman Christopher Harborne's matched the amount gifted by fellow British crypto billionaire Ben Dello. The figure is more than the total received by all UK political parties last year. A spokesman for the Prime Minister says his position on Irish unity is unchanged after Donald Trump's intervention. The US President told an audience in Dublin he'd love to see a united Ireland. Andy Burnham has said a referendum is off the table. Conor Murphy from the Republican Party Sinn Féin says the Prime Minister doesn't have that authority.
3: Andy Burnham's remarks about taking things off the table is actually inaccurate. The Good Friday Agreement is a matter of international law. He doesn't have the power to decide things are off the table. And the only power that they have is to call the poll and to legislate for its outcome.
2: No one can be seen wearing face coverings as two rallies take place in Portsmouth. Anti-migrant demonstrators and counter-protesters are marching through the city. Police have warned anyone in a mask risks arrest. A 36-year-old man's being questioned on suspicion of murdering a pensioner in Oxfordshire. Thames Valley Police say Jill Gant, who was 88, was found dead in Abingdon on Thursday. In sport, England's cricketers have completed a 3-0 series sweep by winning the third test against Pakistan. They reached their victory target of 130 despite a huge scare when they were 2-for-2 on an unexpected fourth day's play at Edgbaston. Joe Root's unbeaten 62 helped turn things around. Batsman Dan Lawrence says his captain was key.
4: Yeah, I mean, it wasn't the ideal start to the day, and well, Abbas was doing what he usually does and put the ball in the right area, but thankfully we had the experience of Joe and a little bit of class from Coxie to get us over the line.
2: And 5 matches are getting underway in the Premier League. Hull kick off against Chelsea after an unbeaten league start, while Fulham take a record of 3 straight losses to Liverpool. In the Scottish League Cup quarterfinals, Hibs go to Ross County. That's the latest. I'm Amy Walsh.

message, eh?

0: कहते हैं सामीन के बताओ कौन कहता है मोहब्बत बस कहानी है। बताओ कौन कहता है मोहब्बत बस कहानी है। मोहब्बत तो सफीहा है, मोहब्बत आसमानी है। मोहब्बत को खुदारा तुम कभी भी झूठ न समझो। मोहब्बत मौजज़ा है, मौजज़ों की तर्जुमानी है। मोहब्बत फूल की खुशबू, मोहब्बत तितलियों का रंग, मोहब्बत पर्वतों की झील का शफाफ पानी है। मोहब्बत एक सितारा है, वफा का इस्तआरा है। आए हाय, मोहब्बत एक सितारा है, वफा का इस्तआरा है। मोहब्बत सीप का मोती, बहर की बेकरानी है। जमीन वाले बताओ किस तरह समझे मोहब्बत को। मोहब्बत तो जमीन पर आसमानों की निशानी है। मोहब्बत रोशनी है, रंग है, खुशबू है, नगमा है। मोहब्बत उड़ता पंछी है, मोहब्बत बहता पानी है। मोहब्बत माँ का आंचल, मोहब्बत बाप की शफ़क़त। मोहब्बत हर जगह हर पल खुदा का नक्शे सानी है। मोहब्बत बहन की उल्फत, मोहब्बत भाई की चाहत। मोहब्बत खेलता बच्चा है और चढ़ती जवानी है। क्या बात है, मोहब्बत हक का कलमा है, मोहब्बत चाशनी मन की। मोहब्बत रूह का मरहम, दिलों की हुक्मरानी है। मोहब्बत तो अजल से है, मोहब्बत ता अबद होगी। मोहब्बत तो आफाकी है, जमानी ना मकानी है। आए हाय, क्या बात है, मोहब्बत फना हो जाएगी दुनिया, फना हो जाएंगे हम तुम। गौर से सुनिएगा सामीन, क्या बात है। फना हो जाएगी दुनिया, फना हो जाएंगे हम तुम, फक्त बाकी मोहब्बत है, मोहब्बत जावेदानी है। आई हाय, क्या बात है, इतना बड़ा मैंने आपको भाषण दे दिया मोहब्बत का, आपको समझ आ गया आपको या नहीं। जोक असाइड, इट वॉज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अपनी तारीफ नहीं कर रही बाबा, मैं शायर की तारीफ कर रही हूँ, जिस किसी ने भी ये लिखा, बहुत खूबसूरत लिखा। मतलब एक मोहब्बत के हवाले से एक ऐसी तहरीर कि जो सीधा दिल में पेवस्त हो जाए। क्या ख्याल है आपका। बहरहाल प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक बार फिर आप सबको खुलूस दिल से खुशामदीद वेलकम और जी आयानू कहती हूँ। आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो की नशरियात ऑन 103.2 एफएम पर और मैं हूँ हुमैरा, आपकी मेज़बान, रहूँगी आपके साथ ठीक 5 बजे तक। और सोफार मेरा साथ निभाने का बहुत शुक्रिया। तो जनाब सुन लीजिए, हाँ गौर से सुनिए। फैंसी अ बिट ऑफ फन, विजिट सनराइज प्ले एंड हेल्प राज रेस बैक टू द स्टूडियो इन सनराइज स्टूडियो रश। Test your film knowledge with your Bollywood quiz or discover which Bollywood character you are. That would be fun, wouldn't it, Sameen, to do the quiz and then find out which Bollywood character you are. I've just read it now, seen it now, and I'm thinking, was it? That would be so interesting, don't you think? I wonder which Bollywood character I am. Any guesses? Any guesses? Call me. From what you know, how much you know of me, what do you think, which Bollywood character I am? And do tell me, what do you think, which Bollywood character you think you are? Anyways, it says play now at sunrise.radio and join the free Sunrise Listener Club to unlock even more. So, zarur jaiye sunrise.radio par. बिकॉज सबसे अच्छी बात ये, इज़ फ्री टू ज्वाइन, कुछ पैसे भी नहीं लगेंगे। थोड़े क्विज वेज और टेस्ट वेस्ट भी कर लीजिए आपकी नॉलेज और फाइंड आउट कीजिए कि विच बॉलीवुड कैरेक्टर यू आर। लेकिन फ्रॉम वॉट वी नो ऑफ ईच अदर, डू लेट मी नो ऑन 01274306666 पर कि विच बॉलीवुड कैरेक्टर डू यू थिंक आई एम। दैट वुड बी फन टू नो। एनीवेज, तो ऐसा है कि इससे पहले कि हम आपको एक खूबसूरत से गीत की जानिब ले जाएं और ब्रेक का टाइम भी आ चुका है, हमें कॉल की थी हसन आपने पाकिस्तान से, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन ख़ुद भी एक बहुत ही नामवर पाकिस्तान के रेडियो स्टेशन के आरजे हैं और वो हमेशा मेरा प्रोग्राम सुनते हैं और हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, काइंड वर्ड्स यूज़ करते हैं मेरे लिए, और हमेशा मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे आपका प्रोग्राम सुनना है सुनना है सुनना है। एंड इतनी भी बंदे की लाइफ बिजी नहीं होनी चाहिए, ऑनेस्टली वी हैव टू मेक अ sort of pact that we have to pause our life for a bit and do things that have so much fun in it as well, you know. Bhagam bhag se lagi hui hai, kutte jaise piche pade hue hain, ab sar koi bhag raha hai, kehte hai aap kyu bhag rahe hain, kehte pata nahi wo bhag raha hai to main bhi bhag raha hu, bas is tarah ho gaya, ek dusre ki takleed ho rahi hai aur bas bhage ja rahe hain hum sab, to koi pause karna hi padega zindagi ko, lekin behrhal hasan main puri koshish karungi ki main kisi din aapka program sunu, unne kaha ki aap mujhe ek sachi si advice dijiye, aap mujhe bataiye ki kya cheez achhi hai kya cheez nahi achhi hai, maine unse kaha jitni achhi aapki awaaz hai hasan, क्योंकि पहली बार जब उन्होंने कॉल की थी तो मुझे नहीं पता था कि वो रेडियो प्रेजेंटर है, मैंने उनसे कहा था कि यू शुड बी ऑन रेडियो, योर वॉइस इज़ फॉर रेडियो, उन्होंने कहा गेस व्हाट, आई एम आरजे ऑलरेडी इन पाकिस्तान के रेडियो स्टेशन में, तो आई वाज लाइक वाओ, मेरी ऑब्जर्वेशन और मेरी जजमेंट कितनी अच्छी है आवाज़ को लेके, लोगों को लेके, यप यप। तो बहरहाल हसन थैंक यू सो मच, आप हमेशा कॉल करते हैं और हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, उन्होंने कहा कोई अच्छा सा गीत जो आपको बहुत पसंद हो वो ज़रूर सुनाइएगा। जितने भी मैं गीत आज लगा रही हूँ तो ये सारे ऐसे हैं कि मुझे बहुत पसंद हैं, आज मैंने कहा कोई सैड सॉन्ग नहीं चाहिए, मुझे बहुत ही रोमांटिक एंड अपबीट काइंड ऑफ सॉन्ग चाहिए, और जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो वो सॉन्ग आज मुझे चाहिए, फिर हल्का हल्का ये जो हल्का हल्का सुरूर है, जी नहीं ये सॉन्ग बिल्कुल नहीं लगा रही हूँ, हल्के हल्के पे याद आ गया, तो ऐसा ऐसा हम फिर थोड़ी सैडनेस की तरफ भी आएंगे, क्योंकि लाइक आई सैड इस तरह तो ज़िंदगी में चलता रहता है ना, लेकिन आज नहीं, नॉट टुडे, आज हम सिर्फ हंसेंगे, अच्छे अच्छे मूड में अच्छी अच्छी बातें सिर्फ करेंगे, कोई सैडनेस की बात आज नहीं करेंगे, ठीक है, अगले हफ्ते देखा जाएगा। तो बहरहाल हसन बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए सलामत रहिए। सामीन ऐसा है कि गीत तो मैं आपके लिए लगा ही रही थी, दो गीत आपके लिए क्यों किए हैं, दोनों ही मुझे बहुत प्यार पसंद हैं, एक है दिल क्या करे, आई थिंक मूवी का नाम है, अलका याग्निक की आवाज़ है, प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे कभी हम नहीं थे, आई एब्सोल्युटली अडोर दिस सॉन्ग। एंड उसके बाद का जो गीत मैंने क्यों आपके लिए किया है वो आपको पता ही है कि कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जिसके बगैर मुझे अपना प्रोग्राम इनकम्प्लीट लगता है, इवन इफ आई हैव टू रिपीट इट आई डोंट माइंड, बिकॉज सॉन्ग है इतना प्यारा और जो कि है लेट नाज़िया हसन की आवाज़ में, जो कि मेरा एब्सोल्युट फेवरेट है, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए, सच अ बीट सॉन्ग, इतना पुराना येट हर दफ़ा नया लगता है, and you gotta agree with me, I'm sure you agree with me, right? Anyways, तो गीत तो फिलहाल पॉज करना ही पड़ेगा क्योंकि ब्रेक आ गई है, तो हम चलते हैं ब्रेक की जानिब और ब्रेक के उस पार हम लगाएंगे ये खूबसूरत सा गीत, चलते हैं ब्रेक की जानिब, but don't you go anywhere and don't touch that dial.
1: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
0: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है, शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
0: सोफी ज्वेलर्स 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
3: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

जी हाँ सामीन, तो आप सुन रहे थे प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। ये सॉन्ग जाएगा राजेश जी के नाम। थैंक यू राजेश जी, ऑल द वे फ्रॉम डैलस। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और उन्होंने कहा कि ये गीत मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है। मैंने कहा मेरा भी, तो मैंने कहा चले ये गीत हम आपके नाम कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा हमें कॉल की थी अज़र आपने, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी। अज़र जो हैं वो एक, हमेशा बताती हूँ कि बहुत अच्छे शेफ़ हैं, बहुत ही एक मुकामी रेस्टोरेंट में, ज़ाहिर है आई एम नॉट गोना नेम, मुकामी रेस्टोरेंट में शेफ़ हैं। और उसके अलावा अपना भी कुछ खाने पीने का उनका बिज़नेस करते हैं। वो हमेशा मुझे कहते हैं, आप हमेशा कहती हैं कि आऊँगी, और इतनी आप कहती हैं मैं फूडी हूँ, ये हूँ, आप आती नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि बस अब ना, मैं भूल गई थी कि एक्चुअली वहाँ भी आप करते हैं, स्टॉल है आपका। तो मैंने कहा अब तो आप बेफिक्र रहे, मैंने आना है संडे और खूब वो खाना है मुझे। आई डोंट नो वो क्या उनके स्टॉल पे होता है खाने का, लेकिन मुझे पानी पूरी खानी है और चाट खानी है, हाय अल्लाह, और चिटोरी चिटोरी सारी चीज़ें खानी है। तो उन्होंने कहा आप आइए, ज़रूर आइए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमेशा इतनी इज्जत से, इतने एहतराम से बात करते हैं, इतनी दुआओं से नवाजते हैं। आपके लिए भी ढेर सारी दुआएं, खुश रहिए, सलामत रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने याद किया। तो सामीन, इससे पहले कि ब्रेक का टाइम आ जाए, जो कि आने ही वाला है ब्रेक का टाइम, मैं चाहती हूँ कि ये मेरा पसंदीदा गीत हम सुने, क्योंकि इंडीड आई लव दिस सॉन्ग, आई ऑलवेज हैव लव दिस सॉन्ग। इट्स, आई डोंट नो इफ इट्स द म्यूज़िक, इट्स लेट नाज़िया हसन, हर वाइब, हर एनर्जी इन दैट, वॉट इज इट कंपोजिशन, बट दिस समथिंग अबाउट दिस सॉन्ग दैट आई एब्सोल्युटली लव। आइए मिलकर सुनते हैं।

जी हाँ सामीन, ब्रेक के इस पार आप सबको खुश आमदीद वेलकम। और जी आया नू कहती हूँ, आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो की निशानियात 103.2 एफएम पर, 103.2 एफएम पर। और मैं हूँ हुमैरा, आपकी मेज़बान राहत फ़तेह अली खान। आई है क्या कहें, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, इतनी खूबसूरत गीत, इतनी खूबसूरत आवाज़, इतना खूबसूरत गीत, मुजक्कर और मोन्स गीत होती है, बारिश आती है तो पानी आती है, तो मैं भी थोड़ा सा वो हो जाती हूँ मुजक्कर मोन्स में। गीत होता है या होती है, बहरहाल खूबसूरत गीत था आपने सुना और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो स्टोरी टाइम, मुझे सफीला जी की बहुत याद आ रही है इस वक्त, क्योंकि वो हमेशा कॉल करके, जब भी प्रोग्राम होता था वो कॉल करके कहते थे, ऐसे ही लाड़े देती रहती है हुमैरा बेटी के स्टोरी टाइम और एंड तक स्टोरी नहीं होती है और हम इंतज़ार करते रहते हैं, तो वो हमेशा ये कहते थे। और एकदम से आई सेड व्हाई नॉट, लेट्स हैव स्टोरी टाइम। स्टोरी तो क्या होती है सामीन, ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो एक रिमाइंडर होती हैं, जो हमें हमारी इकदार, हमारा जो एक तमद्दन, तकद्दस, हमारा जो एक कल्चर या जो एक हमारा एक ऑर्डेंड होता है अल्लाह सुबहान ताला की तरफ से जो चीज़ें, तो उसको हम बाज़ औक़ात भूल नहीं जाते, लेकिन ज़िंदगी की भागम भागी में हम थोड़ा उसके पसे पुश्त डाल देते हैं। लेकिन जब इस तरह के रिमाइंडर सुनते हैं तो वी ऑल सॉर्ट ऑफ पॉज एंड थिंक कि हाँ यार, वाकई हमें साबित कदम रहना चाहिए और हमें दूसरों का ख्याल करना चाहिए, हमें इस नहज पर, इस सहज पर हमें सोचना चाहिए, तो बस स्टोरी में ढल जाती है वो चीज़। बहरहाल तो हुआ कुछ यूँ कि डॉक्टर आरफा सैयदा जहरा कहती हैं कि एक ईद पर मैंने अपनी माँ से फरमाइश की कि इस ईद पर मैं नीले रंग का गरारा पहनूंगी और वो गरारा टफिटा का हो, उस पे मुझे हल्के पीले रंग की जॉर्जेट की कमीज चाहिए और उस पर चुनरी का दुपट्टा चाहिए। तो मेरी माँ ने बड़े प्यार से और बहुत लाड से मेरा वो ईद का जोड़ा बनाया और मैं वो ईद का जोड़ा पहनकर बहुत खुश हुई। अच्छा, हमारे यहाँ एक रस्म है, ईद का नाश्ता एक बहुत बड़ा जश्न होता है। अब देखिए स्टोरी में भी खाना, अब मैंने चूज़ ऐसी स्टोरी की जिसमें खाने का जिक्र आए, क्या हूँ मेरा। बहरहाल तो आगे मतलब बढ़ते हैं, वो कहती है कि हमारे यहाँ एक रस्म है कि ईद का नाश्ता एक बहुत बड़ा जश्न होता है। तो जब हम ईद के नाश्ते से फारिग हुए तो मैंने अपनी माँ से कहा कि अम्मी अब हम खेलने जा रहे हैं, तो उन्होंने इंतहाई लाड से बाहें फैलाईं और मुझे अपनी बाहों में लेके चूमते हुए पूछा कि तुम्हें अपना जोड़ा बहुत अच्छा लगा ना, तो मैंने कहा हाँ बहुत खूबसूरत है, जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही है। तो अम्मा जी कहने लगी कि बेटा अब ये जोड़ा तुम्हारे लिए ही है ना, तो मैंने कहा जी अम्मी जी बिल्कुल। तो अम्मा बोली कि बेटा तुम जब अब बाहर खेलने जाओगी तो बहुत से बच्चों ने ऐसा जोड़ा नहीं पहना होगा, तो क्या हर्ज है अगर तुम अपना कोई और जोड़ा जो तुम पहले पहन चुकी हो और वो अच्छा भी हो वो पहन लो और खेलने चली जाओ। उस वक्त ना मेरे दिल में खेलना ज़्यादा अहम था, जोड़ा इतना अहम नहीं था, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है बदल लेती हूँ, तो मैं दूसरा जोड़ा पहन के बदल के चली गई। उस वक्त खेल भी बहुत मज़ेदार थे, लेकिन बहुत बाद मैं ज़िंदगी में मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ जो है वो मुझे क्या सिखा के गई है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि देखो लोगों की तरह जीते हैं, वो टैफ्टा का गरारा, वो जॉर्जेट की कमीज़, वो चुनरी का दुपट्टा मुझे अच्छा लगता है, मगर ये सब इसलिए अच्छा नहीं होना चाहिए कि उसे देख के किसी दूसरे के दिल में रंज आए कि वो ऐसा जोड़ा क्यों नहीं पहन सका ईद के दिन। तो क्या है ना सामीन, स्टोरी तो सिर्फ इतनी ही थी, लेकिन अब लोग ना ऐसा नहीं सोचते हैं।
उस वक्त ना इल्म बड़ी चीज थी, शऊर बहुत बड़ी चीज थी उस जमाने में। आजकल जो है वो दौलत बड़ी चीज है। आजकल एक दूसरे से आगे बढ़ जाना, एक कंपटीशन जो है वो चल निकला है कि तुम्हारे पास ये है तो मेरे पास ये होना चाहिए। तो ये जो एक हसद, जलन, कंपटीशन और ये जो इल्म की कमी, शऊर की कमी, दौलत की कमी एक पर्दा डाल देती है ना हर चीज़ पर। तो अब क्या हो गया, आई डोंट वांट टू मेक इट इनटू अ लेक्चर, लेकिन अब बात से बात चल निकली तो इतना तो ज़रूर कहूँगी कि आजकल ऐसी ऐसी खबरें आपके सामने पहुँच रही हैं कि स्पेशली पाकिस्तान के, आई एम श्योर के अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में और भी बहुत सी कंट्री में सिमिलर इंसिडेंट्स होते होंगे, लेकिन अब चूँकि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो वो खबरें हमारी आँखों के सामने से गुजरती हैं। तो मैं आजकल पढ़ के बहुत रंजीदा हो जाती हूँ देख के कि बाप ने बेटे का कत्ल कर दिया, बेटे ने माँ बाप को मार दिया, लालच के उसमें कर दिया। तो होता क्या है कि कहीं ना कहीं, आई एम सॉरी, लेकिन थोड़ी औरतें भी कसूरवार होती हैं क्योंकि शादी के बाद एक कंपटीशन हो जाता है कि देवरानी के पास ये, जिठानी के पास ये। तो आई डोंट केयर कि किस तरह पैसा आए, लेकिन बस पैसा आना चाहिए। बर्तरी दिखाने का शौक जो है ना वो हमें, फिर वो शौहर हजरात जो होते हैं वो काम पर जब जाते हैं तो रिश्वत और ब्राइबरी और इन चीज़ों का बहुत बाजार गर्म हो जाता है कि भाई अब घर में सुकून नहीं है, पैसा तो किसी तरह लेके ही जाना है क्योंकि उसके पास गाड़ी है, उसके हमारे पास नहीं है, उसके पास ये टीवी है, हमारे पास वो टीवी नहीं है, उसने सोने के कंगन बनाए, मेरे पास नहीं है। तो वो एक प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर में कहीं से भी दौलत आए लेकिन आनी चाहिए। तो वो ये जो एक ऐसा सिलसिला चल निकला है ना, तो उसमें इल्म और शऊर और अक़ल ये सब चीज़ें मात पड़ गई हैं, और दूसरों को ये दिखाना। तो उस ज़माने में क्या होता था कि लोगों के एहसासात नहीं मर गए थे, तो एहसासात की बीमारी थी, और कोई बीमारियां नहीं होती थी, एहसास की बीमारी होती थी उस ज़माने में कि वो बड़ा एहसास होता था कि यार ये किस तरह दूसरों को देख के उनका दिल ना दुख जाए। हम थोड़ा अगर अल्लाह ताला ने हमें दिया है तो वो एहसास रखते थे कि अगर वो सफ़ेद पोश लोग हैं तो हम उनके सामने इस तरह बन सवर के जाएंगे तो उनका दिल ना दुखे कि अल्लाह ताला आपने हमें क्यों ये नहीं दिया। हालांकि अल्लाह ताला तो अपने हर बंदों को इतना इक्वली प्यार करते हैं, लेकिन वो एक को देते हैं वो सिर्फ एक टेस्ट होता है उनके लिए कि हम उस पैसों के साथ वो क्या करते हैं। हम दस्तरखान बढ़ाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, उसमें से जो नेमत अल्लाह ताला ने दी है उसमें से हम दूसरों का भी भला करते हैं, या हम सब एक ढेर जमा करते हैं कि जो कुछ आए वो हमें ही आए, हमारा ही बस घर बढ़ता रहे। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं सामीन के जिस पर हमें ज़रूर पॉज करना चाहिए, सोचना चाहिए, और हमें अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल ज़रूर करना चाहिए। लेक्चर ख़त्म हुआ, लेकिन बहरहाल छोटी सी स्टोरी थी, मेरा बहुत दिल करता आपके साथ शेयर करूँ। ब्रेक का टाइम आने ही लगा है, लेकिन उससे पहले एक अपबीट सा, आप चूँकि इतना लेक्चर सुन लिया तो एक अपबीट सा सॉन्ग तो बनता है, आइए मिलकर सुनते हैं।

0: हाँ सामीन, वेलकम बैक। तो आपने बैक टू बैक दो गीत सुने, आप आए बाहर आई, और आपने सुना। बाय द वे, ये मेरे लिए नहीं था, ये आपके लिए था कि आप सब आए तो बाहर आ गई। तो आई होप कि आपने गीत पसंद किया होगा। दूसरा मेरा पसंदीदा गीत था, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, गोल्डन ओल्डी क्लासिक, मतलब किसे नहीं पसंद पुराने गीत, हर एक को पसंद है। इट डज नॉट मैटर व्हाट एज ब्रैकेट यू बिलोंग टू, बट पुराने गीतों की बात ही कुछ और है। कुछ ही लम्हों में टाइम हो जाएगा न्यूज़ ब्रेक का, और ये घंटा भी अपने अख्ताम को पहुंचेगा। आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह दो घंटे आपने मेरा साथ निभाया, एंड आई डिडंट फील अलोन हियर एट ऑल, आई वाज लाइक प्लेइंग सॉन्ग, टॉकिंग टू यू ऑल, पयाम और सलाम, एंड हाउ दीज टू आवर्स फ्लोन बाय, I have no idea, honest to God. तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह आप मुझे जो आखिरी घंटा है उसमें भी मेरा साथ भरपूर तरीके से निभाएंगे। कुछ पयामो सलाम है वो आपकी गोश गुजार कर लें, और उतने में ही टाइम हो चलेगा न्यूज़ ब्रेक का। तो हमें कॉल की थी नदी मंसूर, आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और नदी मंसूर ने कहा वेलकम बैक, अच्छा लगा कि आप वापस आई। तो मैंने कहा कि जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नदी मंसूर, एक हमारी सनराइज़ के बहुत सारे प्रोग्राम में लाइव आते हैं और अपनी आवाज़ का जादू जगाते हैं और गीत गाते हैं। तो मैंने कहा कि इतना अच्छा लगता था जब पहले लाइव कॉल्स लेती थी, तो आप ज़ाहिर आके गीत वगैरह सुनाते थे, अब मैं लाइव कॉल्स नहीं लेती हूँ। ऑल्दो आमिर जी अक्सर कहते रहते हैं कि यू शुड टेक लाइव कॉल्स, लेकिन फिर मुझे उसमें अपने बक बक करने का मौका नहीं मिलता ना, तो ये बात है। तो अब देखिए, मैंने तो ऑनेस्ट बन के आपको बता दिया कि मैं लाइव कॉल्स क्यों नहीं लेती, क्योंकि उसमें बक बक नहीं कर सकती मैं अपनी। लेकिन बहरहाल जोक असाइड, इंशाल्लाह इफ वन डे देन नदी मंसूर जी आपको हम ज़रूर सुनेंगे दोबारा से। आपकी नई ख्वाहिशात का, नेक तमन्नाओं का, दुआओं का, और आपकी इतनी इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, सलामत रहिए। तमाम सुनने वालों को आप सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, खुर्रम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी। और खुर्रम जी एक वाहिद ऐसे इंसान है कि जिनसे बात करते करते गुफ्तगू ऐसे चली जाती है कि हमेशा एंड अप पाकिस्तान के हालात, या कभी हुक्मरान, या कभी कोई चीज़ जो सही नहीं है, और मतलब वो अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैं बहुत पैशनेट इस बात में फ़ील करती हूँ कि मैं अक्सर उनसे कहती हूँ कि पाकिस्तान में हालात कैसे हो गए हैं, और किस नहज पे हमारा मुल्क जा रहा है, लोगों को क्या हो गया है, इतनी वारदात होती हैं, इतने क्राइम्स हो रहे हैं, लोगों की जानें ज़ाय हो रही हैं। तो वो बस एक गुफ्तगू उस पर चली जाती है, और वो मुझे बताते हैं ये सुना, मैं बताती हूँ ये, तो बस इस तरह ही गुफ्तगू रहती है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम जी, खुश रहिए, सलामत रहिए, आपकी नेक ख्वाहिशात का, इतने काइंड वर्ड्स आपने यूज़ किए मेरे लिए, जिसके लिए मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, सलामत रहिए। उसके साथ ही सामीन चलते हैं न्यूज़ ब्रेक की जानिब।
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
2: From the Sky News Centre at 4. The Lib Dems and Greens are calling for a cap on political donations following record handouts. Crypto billionaire Christopher Harbourne has matched a £36 million given to Reform UK by British tycoon Ben Dello. Both say they want to create a level playing field with Labour and the Conservatives. Here's Reform's deputy leader Richard Tice.
3: It's up front so that the Labour Party can't legislate against it in their usual jealous, vindictive way. And it'll be spent across a range of things, including, vitally, campaign managers, really good people. Both the main parties spend in the order of £40 million in a general election year.
2: The shadow Northern Ireland Secretary Alex Burghardt has hit back at Donald Trump's support for a united Ireland. Andy Burnham says a referendum is off the table. An anti-migrant rally and counter-demo are taking place in Portsmouth, with no one appearing to be in face masks. Police have warned anyone wearing a covering risks arrest. And investigations found some peptides for sale on social media are mostly made up of unknown chemicals. Experts warn it's a health crisis waiting to happen. In sport, Chelsea are hosting Hull in the Premier League. It is half-time there at Stamford Bridge. Ryan Bromelow is there.
4: Half time, Chelsea 1, Hull City 2. There are afternoons in football when expectation is quietly overturned. Stamford Bridge is witnessing one of those afternoons. As it stands, Hull City are top of the Premier League after they come from behind to lead Chelsea at the break. Mohamed Bellamy with the brace. Inside 5 minutes, has the Tigers pulling towards a feat of 3 wins in 4. Half time, Chelsea 1, Hull City 2.
2: Liverpool are 0-0 with a winless Fulham. Ipswich are leading Crystal Palace 2-1. Hibs are up 3-1 at Ross County in the Scottish League Cup quarterfinals. And SNL UK returns tonight for Series 2, ready to tackle a new political landscape. The last time the show was on, there was a different Prime Minister. Paddy Young portrayed Andy Burnham in one sketch last time round. That's the latest from the Sky News Centre. I'm AJ Walsh.

0: नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है गर याद रहे। जी हाँ सामीन, प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में एक बार फिर आप सबको खुलूस दिल से खुश आमदीद वेलकम और जी आया नो कहती हूँ। आप सुन रहे हैं सनराइज़ रेडियो की नशरियात ऑन 103.2 FM पर और मैं हूँ हुमैरा आपकी मेज़बान, रहूँगी आपके साथ मैं ठीक 5 बजे तक और सो फार मेरा साथ निभाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मनीषा बाजी, अगर आप प्रोग्राम सुन रही हैं स्टिल, आपने एक गीत का फरमाइश की थी एंड आई कैन नॉट फाइंड योर सॉन्ग। हमारे सिस्टम में आपको पता ही है कि जो होता है हमें हमारे सिस्टम से ही प्ले करना पड़ता है और अगर कोई गीत नहीं होता तो ऐसा आई जस्ट डोंट वांट यू टू थिंक दैट आई इग्नोर्ड इट एंड आई डिडंट प्ले योर सॉन्ग। इस जस्ट मुझे मिला नहीं। और मुजाहिद, आपने भी एक गीत की फरमाइश की थी, इवन तो आपने ये भी कहा था कि आई नो आप फरमाइश नहीं लेती हैं लेकिन मे बी आप अपने प्लेलिस्ट में आप डाल सकती हैं, सो आई थॉट यू नो व्हाई नॉट, लेट मी जस्ट चेक द सॉन्ग्स। तो जो गीत आपने मेंशन किए थे वो भी हमारे सिस्टम में नहीं है। अगर इसके अलावा कोई ऐसा गीत जो आपको पता हो कि कभी आपने सुना है यहाँ पर ही किसी भी प्रोग्राम में, तो प्लीज़ डू गिव मी अ कॉल और आई वुड, मैं ज़रूर, इवन दो आई डोंट टेक रिक्वेस्ट बट इट्स ओके, मैंने अपनी पसंद के बहुत सारे गीत सुन लिए, अब आखिरी आवर है। अगर हमारे उसमें हुआ ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है कि आई डोंट वॉन्ट टू प्ले द सॉन्ग ऑफ योर चॉइस, इज जस्ट इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम टू लुक फॉर द सॉन्ग एंड आई डोंट हैव दैट सॉन्ग एंड यू गाइस कॉल अगेन एंड देन आई लुक, सो उसमें एक वो एक बातों का तसलसल या जो एक होता है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। उस लिहाज से मैं कहती हूँ कि मैं वो गीत लगा लूँ क्योंकि लेट्स फेस इट, यहाँ मैं हमेशा से यही बोला है कि मैं गीत लगाने नहीं आती हूँ। आई लव टू इंटरेक्ट विद यू ऑल, आई लव टू मीट यू ऑल इवन हवा के दोष पर सही, बट इट्स अ ग्रेट, इट्स ग्रेट आई मीन दैट वी आस्क ईच अदर क्या जिंदगी में चल रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या हो रहा है, दैट्स मोर देन इनफ आई थिंक, राइट। एनीवेज, तो हमें कॉल की थी अनवर जी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अनवर जी ने कहा आपके प्रोग्राम बहुत मिस किए एंड आई सेड थैंक यू सो मच अनवर जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने तो आपके खाने मिस किए। तो हमें अनवर जी ने कहा कि आज वो शेफ भी हैं, कुछ और काम भी करते हैं, वो लोगों के लिए बनाते हैं खाने और दिल दरिया दरिया दिल बहुत हैं, वो सबको बांटते भी रहते हैं। तो मेरा ख्याल अल्लाह ताला ने इसीलिए उनको इतनी इज्जत दी हुई है क्योंकि कहते हैं ना कि जो आप बांटोगे वो आपको मिलेगा। तो अगर आप खुशियाँ बांटते हो तो खुशियाँ मिलेंगी, काइंडनेस बांटते हो तो आपको कहीं ना कहीं आके कोई आपसे काइंडनेस शो करेगा। तो जो आप देते हो वो आपको, कुदरत का कानून है ये कि वो चीज़ आपको वापस मिलेगी। तो इसीलिए देखिए मैं भी अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाती रहती हूँ ताकि मैं भी जाके हर जगह अच्छे अच्छे खाने खाती रहूँ। तो ये चीज़ एक है, दैट वॉज जोक बाय द वे। लेकिन बहरहाल अनवर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, अच्छे लफ्ज़ों में आप हमेशा मुझे याद करते हैं, दुआएं देते हैं, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, सलामत रहिए। सामीन, अगर आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर बनिएगा, 01274306666 हमारा नंबर है। एक छोटी सी अदीम हाशमी की गज़ल और फिर उसके बाद खूबसूरत सा गीत है पंकज उदास जी की आवाज़ में, चांदी जैसा रंग है तेरा, मुझे बहुत पसंद है ये उनकी गज़ल नुमा गीत, तो वो थोड़ी देर में मैं पेश करती हूँ। और पहले अदीम हाशमी की एक छोटी सी गज़ल है, कहते हैं कि पत्थर है तेरे हाथ में या कोई फूल है, पत्थर है तेरे हाथ में या कोई फूल है, जब तू कबूल है तेरा सब कुछ कबूल है, पत्थर है तेरे हाथ में या कोई फूल है, जब तू कबूल है तेरा सब कुछ कबूल है, फिर तूने दे दिया है नया फासला मुझे, फिर तूने दे दिया है नया फासला मुझे, सर पर अभी तो पिछली मुसाफत की धूल है, तो दिल पे बोझ लेके मुलाकात को ना आ, तू दिल पे बोझ लेके मुलाकात को ना आ, मिलना है इस तरह तो बिछड़ना कबूल है, आए हाय आए है, तू यार है तो इतनी कड़ी गुफ्तगू न कर, तू यार है तो इतनी कड़ी गुफ्तगू न कर, तेरा उसूल है तो मेरा भी उसूल है। और आखिर में कहते हैं कि लफ्ज़ों की आबरू को गुनवाओ नयूं अदीम, लफ्ज़ों की आबरू को गुनवाओ नयूं अदीम, जो मिलता नहीं उसे कहना फजूल है। ये तो थोड़ी सी नेगेटिव कॉनोटेशन पर थी ये गज़ल, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा रोमांटिक पोइट्री नहीं होती, बल्कि मेरा ख्याल है कि डिमांड ही नहीं है तो मार्केट में ही नहीं होती बहुत ज़्यादा रोमांटिक पोइट्री, क्योंकि आजकल हर कोई टूटा हुआ दिल और पता नहीं क्या क्या दिल जले बैठे हुए हैं बाहर, तो लगता है कि जो डिमांड में होती हैं पोइट्री भी इस तरह की बहुत वो होती हैं, बहुत कम ऐसी वज़न वाली रोमांटिक पोइट्री सामने आती है। तो बहरहाल जो कुछ भी था, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इससे पहले कि मैं ये गीत आपके लिए प्ले करूँ, चांदी जैसा रंग, वी हैव टू गो ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, लेकिन जैसे ही वापस आएंगे आप सुनेंगे इस गीत को। इन द मीन टाइम इफ़ यू वांट टू गिव मी अ कॉल यू कैन डू सो ऑन 01274306666 पर। आइए चलते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
0: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
0: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative. Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

Wow, absolutely mesmerizing, absolutely beautiful. I mean, एक एक लाइन की मैं क्या तारीफ करूँ, एक एक शेर जो था वो ज़बरदस्त, इतनी मतलब अपने महबूब की इतने खूबसूरत तरीके से तारीफ, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। आई होप कि आपने एंजॉय किया हो। अब्दुल हमीद अदम ने क्या खूब कहा कि जिनको कुदरत ने हुस्न बख्शा हो, जिनको कुदरत ने हुस्न बख्शा हो, कुदरतन कुछ शरीर होते हैं। जिनको कुदरत ने हुस्न बख्शा हो, कुदरतन कुछ शरीर होते हैं। ज़िंदगी के हसीं तरकश में कितने बेरहम तीर होते हैं। है खुशी भी अजीब शह लेकिन, है खुशी भी अजीब शह लेकिन, गम बड़े दिल पजीर होते हैं। और आखिर में वो कहते हैं, जो कि मुझे इनका ये शेर बहुत पसंद है, और इसे एक इस शेर के लिए मैंने ये जो कुछ छोटा भी जो पढ़ा मैंने, कि कहते हैं, गौर से सुनिएगा सामिन, कि ए अदम, अब्दुल हमीद अदम कहते हैं कि ए अदम एहतियात लोगों से, ए अदम एहतियात लोगों से, लोग मुनकर नकीर होते हैं। आय हाय क्या कहने। तो जनाब ऐसा है कि आने वाला गीत जो है वो मुझे बहुत बहुत बहुत पसंद है। किशोर कुमार की आवाज़ है, मुझे एब्सोल्यूट मेरा पसंदीदा गीत है। इससे पहले कि ब्रेक आ जाए, रियली रियली वांट टू, बट कुछ पयाम सलाम है, मैं वो भी आपकी गोश गुजार करना चाहती हूँ। उससे पहले हमें कॉल की थी दिनेश भाई आपने, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैंने उनसे यही कहा कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि रब जो है वो आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, आप इतने अच्छे हैं, हमेशा मुझे इतने प्यार से कॉल करते, इतनी दुआएं देते हैं। तो उन्होंने कहा कोई पुराना अच्छा सा गीत लगा देना। तो इस वक्त ये जो गीत है मुझे बहुत पसंद है, विच इज़ किशोर कुमार की आवाज़ में, रिम जिम गिरे सावन। तो आई होप कि आप ये एंजॉय करें, खुश रहिए, सलामत रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एन आरिफ जी फ्रॉम ब्राडफोर्ड, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, भी दर्जी हैं आप और उनकी हमेशा आवाज़। ओ जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप जी, मतलब एक बहुत ही खुश खुर्रम रहने वाली आवाज़ है। और मैंने उनसे ये कहा भी, उन्होंने कहा कि वाकई ऐसा होना भी चाहिए इंसान को, एंड आई टोटली अग्री। मैं ख़ुद भी यही कहती हूँ कि नो मैटर रेन और शाइन, इंसान को हमेशा पुरजोश और पॉजिटिव और फुल ऑफ एनर्जी होना ही चाहिए। आपने कहा कि तमाम सुनने वालों को सलाम कहिएगा, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, सलामत रहिए। सामीन आइए मिलकर सुनते हैं रिम झिम गिरे सावन। अगर आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल कीजिएगा 01274 3066666 पर।

जी जनाब, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इट वाज। यही कह रहे हैं ना आप? मुझे पता है, इसीलिए तो लगाया था। आपके और हमारी पसंद मिलती भी तो इतनी है ना, और यही एक फैमिली होने का, यही एक दिल के करीब दिल मिलना, ख्यालात मिलने वाली बात है। बट हैविंग सेड दैट, दिस सॉन्ग वेंट स्पेशली टू नबीला। तो लेस्टर में हैं अमीन जी, वो अक्सर कॉल करते हैं और इतना दूर बैठ के डीएबी के ज़रिए प्रोग्राम सुनते हैं, और हमेशा जब भी होती हूँ तो कॉल करके ज़रूर बताते हैं। और हम मुझे भी पता होता है कि इनका फैमिली टाइम होता है ये, और वो लोग सब मिलके जा रहे होते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने। तो मैं हमेशा, आज भी मैंने अमीन जी से कहा, मैंने कहा कि तो ग्रॉसरी शॉपिंग हो रही है, कहते हैं आपको याद है। मैंने कहा ले, ये कोई भूलने वाली बात है, आप इतना अपना टाइम निकाल के वहाँ से आप मुझे कॉल करते हैं, तो इट मीन्स अ लॉट टू मी, ना वाई वोंट आई रिमेंबर। तो उनके साथ आज उनकी, गालिबन उनकी बेटी थी, आई अपोलोजाइज इफ आई एम रॉन्ग, बट यही मैंने तो यही सुना कि उनकी बेटी थी नबीला। तो स्वीट हार्ट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी। नबीला की फरमाइश थी कि मोहब्बतें मूवी का गीत जो है वो कोई सा भी गीत लगा दें, तो अगर मोहब्बतें मूवी मेरे सामने आए तो माई फर्स्ट चॉइस वुड ऑलवेज बी हमको हमी से चुरा लो, बिकॉज इट्स सच अ रोमांटिक एंड अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। तो आई होप नबीला के आपको पसंद आया होगा, एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, एंड होप टू हियर फ्राम यू बोथ नेक्स्ट सैटरडे एज वेल इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तो जनाब, अगर आप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर बनिएगा 01274306666 पर, इससे पहले कि ब्रेक सामने आके खड़ी हो जाए, घूरे मुझे, और फिर जो मुझे जो है वो उसकी बात सुननी पड़ती है। वैसे तो मैं सुनती किसी के बाप की नहीं हूँ, लेकिन जब न्यूज़, जब ब्रेक आ जाती है सामने, तो मैं कहती हूँ यार छोड़ो, पंगा नहीं लेना, करने दो यार, चलो। तो मैं लगा जाना पड़ता है हमें, लेकिन उससे पहले एक और गीत हो जाए। अब बिट सा, क्या ख्याल है आपका? आइए मिलकर सुनते हैं।

0: जी हाँ सामीन, नदीम अब्बास लूने वाला जो ये गीत गा रहे थे, काइंड ऑफ अपबीट सॉन्ग था। इट वाज अ नाइस सॉन्ग, इट वाज अ गुड सॉन्ग, राइट? आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। हमें कॉल की थी जावेद मीर साहब, आपने, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा लगा आपसे बात करके और जानकर भी खुशी हुई कि उनकी तबीयत ठीक है। कभी कभी उनकी तबीयत नासाज होती है, उनकी आवाज़ से पता चल जाता है, और जब मैं पूछती हूँ तो वो कहते हैं कि हाँ कुछ तबीयत नासाज है, या कभी ज़िंदगी में नशीब व फराज ऐसे इंसान के रहते हैं कि इंसान you know, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जान के खुशी हुई कि वो ठीक हैं। एंड उनको मैं यही बता रही थी कि कभी लाइव कॉल्स का सिलसिला ऐसे कुछ हुआ तो कभी आके ज़रूर अपनी आवाज़ का जादू जगाइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। वो आमिर जी के प्रोग्राम में अक्सर पेशतर आके वो गीत गाते हैं, तो मैंने कहा कि कभी लाइव कॉल्स का सिलसिला हुआ तो आपकी आवाज़ में कोई गीत हम ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लेकिन लाइव कॉल्स लाइक आई सेड कि मैं खुद लेती नहीं हूँ, लेकिन कुछ सिलसिला शुरू तो करना पड़ेगा। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जावेद मीर जी, तमाम सुनने वालों को अब सलाम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सामीन, ऐसा है कि हमारे पास लिटरली लाइक 15 मिनट्स रह गए हैं, एंड मैं कोई लेक्चर वेक्चर के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, एंड मैं चाह रही हूँ कि इन 15 मिनट्स में आपको अच्छे अच्छे गीत सुना के और फिर मैं आपसे इजाज़त लूँ। एंड तो आने वाला गीत जो है वो भी लता मंगेशकर जी की आवाज़ में है, लग जा गले कि फिर ये हसीन शाम हो ना हो। तो उम्मीद करती हूँ कि ये गीत भी आप पसंद करेंगे, और उसके बाद इजाज़त लेंगे और फिर अगले हफ्ते फिर यही सिलसिला इस तरह ही जारी रहेगा इंशाल्लाह। इन द मीन टाइम आप स्टिल मुझे कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं कॉल, बट फॉर नाउ लेट्स गो ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। डोंट यू गो एनीवेयर, डोंट टच द डायल, एंड आई विल बी राइट बैक।
1: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
2: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
1: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
2: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
3: Official media partner, Sunrise Radio.
4: Move for 10 is here. The new challenge from Disco Can that everyone can join. Move for 10 minutes, 10 times a month. I've got more energy. I feel more confident. I'm sleeping better. From a stretch in the morning to a brisk walk around the park. No pressure, no strict schedule. Just move when it suits you. I've logged 3 sessions already and I'm feeling good. Women across the country are moving for 10 minutes 10 times this month. To join, search This Girl Can Move for 10.
5: On Sunrise Radio.
6: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Okay guys, so the time is 4:46. That's 4:46.
3: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
7: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

जी हाँ सामीन, आपने बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना, लग जा गले कि फिर ये हसीन शाम हो ना हो। क्या खूब किसी ने कहा कि मुकम्मल ज़िंदगी करने की चाहत कुछ नहीं होती। मुकम्मल ज़िंदगी करने की चाहत कुछ नहीं होती, जो लम्हा मिल गया जी लो, रियाजत कुछ नहीं होती। जिसे महरूमियाँ मिलती हैं वही जान सकता है, जिसे महरूमियाँ मिलती हैं वही जान सकता है, ज़बानी हौसला झूठी मुरव्वत कुछ नहीं होती। उसे चाहा तो ये सोचा मोहब्बत ही सभी कुछ है, उसे चाहा तो ये सोचा मोहब्बत ही सभी कुछ है, उसे परखा तो ये जाना मोहब्बत कुछ नहीं होती। किसी ने छोड़ कर जाना हो तो फिर छोड़ जाता है, किसी ने छोड़ के जाना हो तो फिर छोड़ जाता है, बिछड़ना हो तो सदियों की रफाकत कुछ नहीं होती। और आखिर में कहते हैं कि ताल्लुक टूट जाए तो सफीने डूब जाते हैं, ताल्लुक टूट जाए तो सफीने डूब जाते हैं, ये सब कहने की बातें हैं, हकीकत कुछ नहीं होती। तो सामीन, उसके साथ ही तनवीर अख्तर ने हमें कॉल किया था, बहुत अच्छा लगा सिस्टर आपसे बात करके। उनकी तबीयत नासाज है, अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। एंड oh my god, look at me stuttering, but no, I was going to say that despite you not being well, उन्होंने फिर भी टाइम निकाल के और मुझे कॉल की, जिसके लिए बहुत शुक्रिया तनवीर। आखिरी गीत जो है वो आपके नाम मेरी तरफ से, ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एंड गेस व्हाट, यस इट्स अ रैप, सैडली दैट्स ऑल वी हैड टाइम फॉर, बट ओ माय गॉड, दीस 3 hours आई हैव हैड अ ब्लास्ट, आई रियली रियली रियली एंजॉयड माय सेल्फ एंड आई होप द फीलिंग इज म्यूचुअल। जो भी सॉन्ग लगता था, इधर मैंने आपसे बातें की उसमें इतना हंसी, और इधर आई वॉज लाइक लाउडली सिंगिंग एंड डांसिंग सिटिंग हियर अलोन, थैंक गॉड अलोन, अदरवाइज कहें कोई होता तो कहता पागल है पूरी, बट आई डोंट इवन माइंड बींग कॉल पागल, बिकॉज पागलपन तो होना चाहिए, आपको पता ही है वो एक जुनून इंसान को जिंदा रखता है, जीने की आपको एक तड़प और उमंग देता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। तो लेकिन फिर भी आई मीन यू वॉन्ट टू बी अलोन वेर यू आर लाउडली सिंगिंग, यू नो, लेकिन आई हैड अ ब्लास्ट, दैट्स द मेन थिंग। मेरी अगली मुलाकात आपसे इंशाल्लाह, आई होप सो कि

सैटरडे सेम टाइम सेम प्लेस पे होगी. एंड वंस अगेन लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड से थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु कॉल्ड मी हु अप्रिशिएटेड माई वर्क हु यूज काइंड वर्ड्स फॉर मी एंड जिन्होंने नहीं भी कॉल किया और खामोशी से प्रोग्राम सुना आप सबका भी बहुत शुक्रिया फॉर ट्यून्ड इन एटलीस्ट. तो अपना आप सब बहुत ख्याल रखिएगा अपना अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखिएगा नॉट जस्ट अपना. दुआओं में मुझे याद रखिएगा जब भी हाथ उठें आपके नमाज के बाद या वैसे ही दुआ के लिए तो याद से मेरा नाम ज़रूर लेके कहिएगा कि अल्लाह ताला जो हैं वो मेरी जो जो दिल में मुरादें हैं वो पूरी करे. आमीन सुम आमीन. और इस फाइनल नोट पर इस फाइनल गीत पर मुझे इजाज़त दीजिएगा कि लोगों को कहते सुना था कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे. लोगों को कहते सुना था कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे लेकिन आप सब से मिलकर महसूस हुआ कि मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे. आपकी आज की मेज़बान को इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London, with even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.

0: ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Move for 10 आ गया है। This Girl Can का नया चैलेंज जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा। मुझे अब ज्यादा एनर्जी फील होती है और कॉन्फिडेंस भी। अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं। जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की ख्वातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफा मूव कर रही हैं। आप भी ज्वाइन करें। सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10।

0: कफ्सन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाया रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.
3: Welcome to the world of BM and CM, Bade Miyan, the Khiladi, and CM, the Baghi.

0: ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें

0: मैं क्या सिर जिया पट्टी जांदा लाल नया कोट
1: किदा वे हरदयाल सिंह अज तू किदा मैनू याद कर लिया भी आ भी आ कुछ नहीं कहता है
0: बंता ले इनू अज जे जी कोई प्रोग्राम लगता भी
1: हाँ जी नाइट क्लब च आ रात में जाना
0: चल ठीक आ मैं भी नाल ही जाऊं
1: नाल जाना ता थोड़ी जी कलोन ला ला
0: लिया ए भी ला लेने आ कोट
1: ओ देसिया पीण वाली थड़ो सेंट आख्या तेनू
0: ओ बाच बाच ठहर जा ओहो हां गड्डी हुण नवी लई आ
1: किथे भरावा छत लाई है
0: ओहो हुण छत नूं मुड़ के किवें जोड़ेगा
1: तू ना फिकर कर बेजारा
0: ओ बल्ले बल्ले भई तेरा सूट बहुत सोहना ए किन्ने कदा आया
1: 5000 डाले दा सूट 800 दी जुत्ती 700 दियां ऐनकां
0: ओहो ला लो साहब
1: 40000 दे सारे गहने 25000 दी घड़ी हां ते सच 2.5 लाख दी गड्डी
0: अच्छा इनू अंग्रेजी च कहंदे आ भाई सूटेड एंड बूटेड

0: खड़ा होने लगा शुरू और तू अगे का तो तुरे आना थोड़ा पिछे के बैठ थोड़ा पिछे।
1: हाँ हाँ हाँ शाबाश
0: ठीक है ठीक है। हाँ जी आओ जी। जदों किसी आशिक की मशूक खा के मुंडे को मिठिया मिठिया जलेबियां करके मुंडे की जेब खाली ते बिना दसे बारला जहाज बह जाती है ते

लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश कर लगे हां पंजाब दिया फोक बोलियां।